ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शुक्रवार है, शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026 सुबह के 5:58:10 हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का दैनिक प्रसारण। आप सबों का आज का दिन शुभ हो। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी।

0: कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:05 और 14 सेकेंड्स में हैं। आइए सुनते हैं चिंतन गांव की ओर।

भारत माता ग्राम वासनी अर्थात माँ भारती का साक्षात रूप हमारा ग्राम है, क्योंकि भारत माँ गांव में बसती है। अतः ग्राम का पूर्ण शिक्षित होना राष्ट्र का शिक्षित होना समझा जाता है। हमारा ग्राम जितना समृद्धशाली होगा, हमारा देश भी उतना ही समृद्धशाली बनेगा। बापू का सपना गांव की समृद्धि में ही निहित है, इसीलिए तो आजादी की शंख ध्वनि महात्मा गांधी द्वारा गांव से ही आरंभ हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांव की ओर आने लगे और आजकल तो गांव चलो का आंदोलन एक जरूरी अंग बन गया है। सभी ये अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के सच्चे हमारे गांव हैं, जहां हम सबों की रक्षा होती है। गांव के लोग प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, पर उन्हें इस आनंद भरे जीवन का पता नहीं रहता। ग्रामीण इलाके की नर नारियां वृद्ध बच्चे वैसे ही किसी अनजान व्यक्ति के प्रवेश करने पर निहारने लगते हैं जैसे प्यासा एक बूंद पानी के लिए निहारता है। उनकी चाहत जाने बगैर कोई इस राह से गुजर जाता है तो वे हाथ मलते रह जाते हैं, दो मीठी बोलियों के लिए जैसे वे उन्हें एकटक निहार रहे हों। वे अपनी बातों को उन तक रखने में भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि किस तरह उनसे बातें की जाएं। इसी माहौल में यदि कोई पढ़ा लिखा युवक है तो ग्रामीण उसी को पदाधिकारी के पास बातें करने, आवेदन लिखने इत्यादि का भार सौंपते हैं। यदि वह युवक इनसे बेईमानी करे तो भला वे सीधे साधे अनजान बने लोगों का क्या कसूर है। पर आज स्थिति कुछ बदली बदली नजर आती है। ग्रामीणों में एक नई ललक पढ़ाई लिखाई के प्रति देखी जा रही है। बूढ़ी बूढ़ियां भी स्लेट पेंसिल लेकर गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों के साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। वे जब एक शब्द लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो मानो वे खुशी से झूम उठते हैं और नए शब्दों को जानने के लिए अपने मास्टर बने बच्चों से

बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। वे उस समय उस नन्हे से शिक्षक को अपना सच्चा गुरु मानने के लिए विवश हो जाते हैं। सचमुच ये शिक्षा या सीखना जो शब्द है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने में उम्र की बाध्यता नहीं होती, न सीखने में ही और न सिखाने में ही। सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलने वाला घटना चक्र है। कभी हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें भी वो अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीख देता है। उससे भी इसकी जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारना सीखना ही है। जरा सोचें, जो वृद्ध नर नारी आज साक्षरता केंद्रों के खुलने पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, क्या वे अपने गुजरे समय में कामधाम, खेतीबारी या लेन देन नहीं करते थे? संभव है हम पढ़े लिखे व्यक्तियों से गलतियां हो जाती हैं, पर एक अनपढ़ खूब सोच विचार कर सही ठेपा लेन देन करता है। वो सैकड़ों बार मनन चिंतन कर दूसरों से पूछताछ कर पढ़े लिखे व्यक्तियों से संपर्क कर ऐसा काम कर दिखलाता है जिसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती, पर उसे चिट्ठी या आवेदन को दूसरों से लिखवाने की बाध्यता होती है, जिसे हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम साक्षरता मिशन पूरा कर रहा है। आज गांव में अशिक्षा रूपी गुलामी से हर व्यक्ति अपने को आजाद कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ग्रामीण जब साक्षर हो रहे हैं तो निश्चित हानि लाभ समझते हुए सभी कार्यक्रमों को सही दिशा देने में अपना योगदान देंगे। आज बापू का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सचमुच अशिक्षित रहने की दिशा में प्रेरित हैं। अब सफलता हमारे कदम चूम रही है। गांव खुशहाल होगा तब हमारा देश और समाज भी खुशहाल होगा। इस खुशहाली को बहाल करने के लिए साक्षरता कर्मियों का योगदान हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन गांव की ओर एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 6:11:20 हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

राम का चरित्र यह सिखाता है कि शक्ति होने के बावजूद संयम कैसे रखा जाए। आज के आक्रामक दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सौम्यता और मर्यादा ही सबसे बड़ी ताकत है।

सबरी के पेड़ खाना, निषाद राज के गले लगाना और वानर भालुओं की सेना के साथ मिलकर रावण को हराना, यह दर्शाता है कि राम का प्रेम जाति वर्ग से ऊपर था, आज के समावेशी समाज का जो एक आधार भी है।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने व्यक्तिगत सुख के ऊपर धर्म और कर्तव्य को रखा। आज के दौर में जब स्वार्थ बढ़ रहा है, राम का जीवन हमें सिखाता है कि अपने दायित्वों का पालन करना ही सच्ची मानवता है।

0: हरिहरन के स्वर में गाए सी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 378 378।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काक भुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग का। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत रजनी प्रिया की कविताएं। 7:30 पर समय होगा कायर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत का। आठ बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम को हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आज के चर्चा का विषय होगा क्या है जीवन में परिवार का महत्व और क्यों मनाया जाता है परिवार को समाज की इकाई। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को और संध्या 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेतीबारी। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। आज के चर्चा का विषय होगा एक सशक्त परिवार के निर्माण में महिलाओं की भूमिका और क्यों मनाया जाता है आज विश्व परिवार दिवस। क्या है इस दिवस का उद्देश्य। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार। 7:30 पर आप सुनेंगे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे सांस से। 7:45 पर समय होगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का और 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पोटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कार्यक्रम का समापन होगा रात्रि के 11:10 पर हमारे स्टूडियो से। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम लोकरंग में आपका सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना इंद्रदेव सिंह और साथियों के आवाजों में।

0: सियाराम पासवान और साथियों के स्वर में भी आप सुन रहे थे लोकगीत, और इसी के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्यधारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं रजनी प्रिया रचित कविताओं को।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कविता के जरिए कुछ भावनाओं को व्यक्त करूंगी जो हम सब से कहीं ना कहीं और किसी ना किसी मायने में जुड़ी होती है। आशा करती हूं कि आप सभी को मेरी कविता पसंद आए। कविता शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मुश्किलें कम नहीं हुई कुछ मन्नतें पूरी होने से फिर सोचा सुकून मिलता होगा जी भर के रोने से, और डर था मुझको खुद के खोने से, फिर अचानक गुम हो गई तकलीफें एक वही माँ के गोद में सोने से। तो चलिए चलते हैं मेरी पहली कविता की तरफ, जो कि समाज और उसके दकियानुषी सोच पर आधारित है, तथा मेरी यह कविता समाज की हकीकत और साथ ही परेशानियों और मुश्किलों से लड़ रहे हर उस स्त्री के लिए है जिन्हें खुद से और लोगों से अपने स्त्री होने के सवाल है कि आखिर क्यों ये नियम और कानून महज स्त्रियों के लिए ही बने हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। सुनिएगा। दरअसल अपनी गलतियों का कुछ यूँ इजहार करती हूँ, देख लूँ जो कभी आईना, मैं खुद से इनकार करती हूँ। दरअसल अपनी गलतियों का कुछ यूँ इजहार करती हूँ, देख लूँ जो कभी आईना, मैं खुद से इनकार करती हूँ। और फिर जान के हकीकत इस जमाने की, आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। फक्र है खुद पर और हाँ खुद पर गुमान भी करती हूँ। जो रंग खुदा ने दिया है बेशक उस रंग से प्यार करती हूँ। फक्र है खुद पर और हाँ खुद पर गुमान भी करती हूँ। जो रंग खुदा ने दिया है बेशक उस रंग से प्यार करती हूँ। और देखे हैं मैंने शादियों के झमेले, बस वही देख, आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। और ये पंक्ति हर उन औरतों के लिए है जो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से और समाज से दबी हैं। कि तकलीफ किसी को ना हो इस बात का ख्याल रखती हूँ, वो घर की बड़ी हूँ ना तो जिम्मेदारियाँ हजार रखती हूँ। फिर समाज के तानों से खुद को हारता देख, आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। कि सवेरे का कोई मोह नहीं अंधेरे में बातें बेशुमार करती हूँ, फिर से दिल टूटने के डर से लोगों से थोड़ा कम ताल्लुकात रखती हूँ। और तंग हूँ मैं देख कर ये बेफिजुल की पाबंदियाँ, आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। और मेरी आखिरी पंक्ति है कि जमीन पर पाँव हैं पर सपने आसमान रखती हूँ। किसी का खौफ नहीं, हाँ एक जिंदा ख्याल रखती हूँ। पर क्यों याद दिलाई जाती है खुद की पहचान, आखिर लड़की क्यों हूँ, मैं ये खुद से सवाल करती हूँ। अंत में 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि जब तूने ही बनाया सबको और तू ही भाग्य विधाता है तो फिर क्यों हम औरतों को महज हर रोज बांटा जाता है। झुककर रहने का सलीका क्यों हमें सिखाया जाता है और इस दुनिया की नजरों में हर रोज गिराया जाता है। क्या हो गई खता जन्म लेके इस रूप में, जो है लगाते बंदिशे ये समाज बेफिजूल में। हम पर जुल्म करके कुछ नहीं तू पाएगा, सोच को बदल अपनी वरना इस भीड़ में तू भी मारा जाएगा। मेरी अगली कविता है आज के समय में बढ़ती सबसे बड़ी समस्या कोरोना पर, जहां आज विश्व भर में अनगिनत जाने कोरोना के विस्तार से खत्म हो गई हैं। मैंने अपनी इस कविता में खुद से बातें कर इंसान का हाल बताने की कोशिश करी है, और मेरी कविता का शीर्षक है क्या हाल तेरा इंसान है। कि अब तो तबाही हो गई बता क्या हाल तेरा इंसान है। इस हो रहे प्रचंड को आज देखता भी भगवान है। रोटियां बिखरी पड़ी अब तो जान भी कुर्बान है। खून से सने ना जाने कितने लहू लुहान है। अब तो तबाही हो गई बता क्या हाल तेरा इंसान है। लगा दी पूरी जिंदगी लगा दी पूरी जिंदगी, बना लिया मकान है, पर देख तू कमजोर इतना हो गया, आज एक वायरस से परेशान है फल तेरी करतूतों का, है फल तेरी करतूतों का, जो बना कोरोना मेहमान है, हर देश इससे डर रहा, अब किस बात का गुमान है, कि अब तो तबाही हो गई, बता क्या हाल तेरा इंसान है। कर ली होशियारी, जलाल ये दीपक हजार है, कुछ समझ आता नहीं, क्या एकता की पहचान है, बंद है घरों में सब, बंद है घरों में सब, ना वो खेल का मैदान है, जा रही है जाने कितनी, मन ये सोच के हैरान है, कि अब तो तबाही हो गई, बता क्या हाल तेरा इंसान है। क्या हो गया है हाल सबका, क्या हो गया है हाल सबका, अब तो मर चुका इंसान है, ना कोई चमत्कार, ना हो रहा कल्याण है, रुक गए हैं वक्त सबके, रुक गए हैं वक्त सबके, ना जाने कैसे चल रहा संसार है, कि अब तो तबाही हो गई, बता क्या हाल तेरा इंसान है, क्या हाल तेरा इंसान है। मेरी आखिरी कविता है इश्क पर, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको पसंद आए। मैं कुछ अक्षरों के माध्यम से अपनी कविता आप सबके दिलों तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है, बात तो कुछ और होती जब तू साथ होता है। ये दिल तन्हा बैठ कुछ खामोश सोचता है, ये दिल तन्हा बैठ कुछ खामोश सोचता है, कभी खुद में ही खुश तो कभी मायूस होता है। ये दिल तन्हा बैठ कुछ खामोश सोचता है, कभी खुद में ही खुश तो कभी मायूस होता है, और कहता है खुद से, कहता है खुद से, कि ये भी कोई जिंदगी है क्या तेरे बिना, बात तो कुछ और होती है जब तू साथ होता है। इस नाम के अंधेरे में फैला एक तेरा ही नूर होता है, मेरे इस नाम के अंधेरे में फैला एक तेरा ही नूर होता है, तेरा साथ मिला है मुझे, हाँ बेशक इस बात का गुरूर होता है, कि मेरे नाम के अंधेरे में फैला एक तेरा ही नूर होता है, तेरा साथ मिला है मुझे, हाँ बेशक इस बात का गुरूर होता है। और क्या करूँ मैं तन्हा इन हाथों की लकीरों का, जबकि बात तो कुछ और होती है जब तू साथ होता है। जो बेखौफ सोचूं तुझे ये दिल हमेशा रंगीन होता है, जो बेखौफ सोचूं तुझे ये दिल हमेशा रंगीन होता है, पर देख तेरे बिन तो मेरा आसमां भी गमगीन होता है। जो बेखौफ सोचूं तुझे ये दिल हमेशा रंगीन होता है, पर देख तेरे बिन तो मेरा आसमां भी गमगीन होता है, और किन मुद्दतों से लड़ूं मैं इस जमाने से, बस ये समझाने को, कि बात तो कुछ और होती है जब तू साथ होता है। हर्फ दर हर्फ अक्षरों में एक तेरा ही ख्यालात होता है, हर्फ दर हर्फ अक्षरों में एक तेरा ही ख्यालात होता है, जो किसी और को लिखूं कभी तो ये दिल बेईमान मालूमात होता है। हर्फ दर हर्फ अक्षरों में एक तेरा ही ख्यालात होता है, जो किसी और को लिखूं कभी तो ये दिल बेईमान मालूमात होता है। और हाँ, थोड़ी आसान हो जाती थी जिंदगी बस एक तेरे पास होने से, खैर मेरी तो जिंदगी ही कुछ और होती जब तू साथ होता है। मेरी अंतिम पंक्ति है कि आखिर किससे पूछूं कि प्यार क्या होता है, किससे पूछूं कि प्यार क्या होता है, खैर पिंजरे में कैद परिंदे का कहाँ कोई आसमान होता है। आखिर किससे पूछूं कि प्यार क्या होता है, खैर पिंजरे में कैद परिंदे का कहाँ कोई आसमान होता है, और घर उड़ भी जाऊं अकेले उस पिंजरे से तो क्या मतलब, कहा ना बात तो कुछ और होती है जब तू साथ होता है। और अंत में कुछ शायरी के साथ आप सबसे विदा लूंगी, कुछ पंक्तियां लिखी है इश्क पर, सुनिएगा। उम्मीद करूंगी कि मेरे कहे शब्द आप सभी के दिलों को छूकर गुजरे, कि काश उम्र मजहब और जाति से परे इश्क होता, काश उम्र मजहब और जाति से परे इश्क होता, जहां अदालत भी अपनी और मुकदमा भी अपना होता, कि काश उम्र मजहब और जाति से परे इश्क होता, जहां अदालत भी अपनी और मुकदमा भी अपना होता, और कौन बैठे इस जमाने को उल्फत समझाने, कि काश इस दुनिया से दूर आशिकों का एक अपना ही शहर होता। दूसरी शायरी है

0: तुझे याद कर हर पहर एक नज़्म लिख रही हूँ, तुझे याद कर हर पहर एक नज़्म लिख रही हूँ, सपनों की तलब अब नहीं तुझे मुकाम लिख रही हूँ। तुझे याद कर हर पहर एक नज़्म लिख रही हूँ, सपनों की तलब अब नहीं तुझे मुकाम लिख रही हूँ। और उठते नहीं कलम किसी और के ख्यालात पर, उठते नहीं कलम किसी और के ख्यालात पे, मैं तुम्हें ही अपना गीत और गज़ल लिख रही हूँ। दुनिया की रियासत में मगरूर हो गए हम, दुनिया की रियासत में मगरूर हो गए हम, तू मान या ना मान हालातों से मजबूर हो गए हम। और मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई नाम कमाने की, तुझसे इश्क क्या किया लो मशहूर हो गए हम। मेरी अंतिम शायरी है कि जीनी है ज़िंदगी अगर तो हर मुकाम हासिल कर ले, जीनी है ज़िंदगी अगर तो हर मुकाम हासिल कर ले, अधूरे हर अरमान को बेशक तू कामिल कर ले। और अगर हो ना है रूबरू तुझे खुद की ही रूह से, अगर हो ना है रूबरू तुझे खुद की ही रूह से, तो बेशुमार ना सही बस जरा सा ही इश्क कर ले, बस जरा सा ही इश्क कर ले।
1: अभी आप सुन रहे थे रजनी प्रिया रचित कविताओं को, और इसी के साथ कार्यक्रम काव्यधारा यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और साथियों को, जिसे हमने लिया था एल्बम चंदा की डोली से। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाजों में, लेकिन इस गीत से पहले सुनते कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: और दोस्तों अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों को।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत के गाए गीतों को, जिसे हमने लिया एल्बम तेरे बिन से। इसी के साथ गैर फिल्मी एल्बम के गीत के अंतर्गत कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके ठीक बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री

0: पैसे और डीजल 93 रूपये 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रूपये 74 पैसे और डीजल 95 रूपये 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रूपये 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रूपये 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु विश्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों

0: और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर

0: in Dharamshala last night. Chasing 201 for victory, Mumbai Indians overhauled the target with 6 wickets in hand and 1 ball to spare. Earlier put into bat, Punjab Kings scored 200 for 8 in stipulated 20 overs. Today, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings in Lucknow at 7:30 p.m. A walkathon was organized by Akashvani Raipur today to mark the completion of 90 years of Akashvani. Employees of Akashvani, retired officials, newsreaders, listeners and prominent citizens of the city participated in the event. The walkathon began at around 7 this morning from the Akashvani building in Civil Lines. It passed through various routes in the city and concluded at the Akashvani premises. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall with thunderstorms over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mahe and South Interior Karnataka today. In Kerala, Met Department has issued a yellow alert indicating isolated heavy rain in 6 of the 14 districts. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Saira. Papers have widely noticed Delhi Chief Minister Rekha Gupta's push for using the metro after PM's appeal. The Pioneer writes, Delhi pushes for metro, work from home to cut fuel use. Congress Kerala suspense ends, Satheesan pips Venugopalan CM race, writes the Tribune. India voices concerns over West Asia crisis at BRICS meeting, writes the Statesman, while the Tribune writes, Indian vessels sunk off Oman as Delhi hosts Iran minister for BRICS meeting. Trump-Xi hold talks in biggest summit ever, writes the Asian Age. All newspapers have carried pictures of a man flung into air 50 feet above ground after heavy rains and storm hit Uttar Pradesh. The Statesman writes, thunderstorms, hailstorms, pummel UP, at least 104 dead. The Hindu, in its editorial titled Cooling Doctrine, writes that access to safe indoor temperatures must be a public health entitlement. What India needs is something larger and more ambitious, a national cooling doctrine, a scalable framework that treats sustained access to safe indoor temperatures as a public health entitlement to be guaranteed. And finally, the Tribune writes about 61-year-old Narinder Kaur, who scored 77% in the Punjab School Education Board Class 10 Open School Examination after she was encouraged by her sons. The newspaper writes, off studies for 45 years, Punjab woman scores 77%. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ईसीआईआर। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची डीसी ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। IPL की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में वेतन मद में हुई 40 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रेजरी निकासी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ईसीआईआर दर्ज की है। रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से जुड़े इस घोटाले की जांच से संदिग्ध अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद राज्य के 6 जिलों में ये गड़बड़ी उजागर हुई है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आज से सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। यह कार्यक्रम 20 मई तक चलेगा।
3: राज्य सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से भ्रष्टाचार नीचे तक ब्लॉक अंचल तक फैला हुआ है, उसको लेकर के जो आंदोलन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय किया है, जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के राज्यव्यापी आंदोलन या फिर अभी पानी और बिजली को लेकर के जिलों में प्रदर्शन, उसको लेकर के एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है।
2: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। रांची में पेट्रोल डीजल की सुचारू आपूर्ति के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि घबराहट में अधिक ईंधन खरीदने से पंपों पर अस्थायी दबाव बना है। प्रशासन ने कंपनियों को निर्बाध आपूर्ति का निर्देश देते हुए जनता से केवल जरूरत भर ईंधन खरीदने की अपील की है। राज्य में ईंधन संकट की अफवाहों के बीच पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने लोगों से संयम की अपील की है। धनबाद में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और सामान्य आपूर्ति है। तेल कंपनियों ने पिछले साल से अधिक ईंधन दिया है। जनता घबराहट में आकर अतिरिक्त खरीदारी न करें।
4: पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं है। झारखंड में किसी भी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का कोई कमी नहीं है। कंपनियां लगातार सभी पंपों को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखें माहवारी के हिसाब से, तो हम पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल तेल की आपूर्ति कर रहे हैं।
2: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने खूंटी में राज्य के पहले लाह बीज सेंटर की शुरुआत की। अब स्थानीय किसानों को यहीं से उत्तम किस्म की बीहन उपलब्ध होगी। मंत्री ने किसानों से संवाद कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न आपदाओं में मिलने वाली मुआवजा राशि का लाभ उठाने की अपील की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वैश्विक संकट और भारतीय युवा विषय पर एक समूह चर्चा आयोजित की गई। डॉ. अमिता कुमारी के मार्गदर्शन में शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर विचार साझा किए। विमर्श में युवाओं ने देश हित में सामाजिक जागरूकता, संसाधनों के संरक्षण और संयम बरतने पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खजूरी बिंघमगंज मार्ग के फ्लाईओवर को पारंपरिक सोहराई पेंटिंग से सजाया है। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों में झारखंड की संस्कृति और प्रकृति की झलक दिखती है। NHAI का उद्देश्य आधुनिक राजमार्गों के निर्माण के साथ स्थानीय कला और कलाकारों को बढ़ावा देना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1191 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन बिना परीक्षा के 10वीं और आईटीआई के अंकों की मेरिट पर होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रांची द्वारा कल शाम 4 बजे दूरदर्शन केंद्र में शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन होगा। समारोह में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार केडिया बंधु, पंडित मोर मुकुट केडिया, पंडित मनोज कुमार केडिया और श्रीजीत चटर्जी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसका उद्देश्य समृद्ध संगीत विरासत को बढ़ावा देना है। राज्य में 19 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एशिया कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चीन से लौटी रांची की फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का रांची एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के बच्चों और खेल प्रेमियों ने तिरंगा लहराकर उनका अभिनंदन किया। दिव्यानी ने सीमित संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर राज्य का नाम रोशन किया है। इस मौके पर दिव्यानी ने कहा कि बड़े देशों के खिलाफ खेलकर काफी अच्छा लगा।
5: अच्छा रहा, अच्छा लगा खेल के, उतना बड़ा बड़ा टीम से खेल के अच्छा लगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, लिबोनन और चाइना, हम लोग अच्छा खेले और बहुत कम गोल खाए हम लोग उन लोग के साथ। उन लोग का गेम से लग रहा था कि हम लोग को बहुत ज्यादा गोल मारेंगे, पर हम लोग बहुत कम खाए थे, तो अच्छा हम लोग का प्रदर्शन था।
2: रांची में झारखंड टी20 क्रिकेट लीग की विजेता ट्रॉफी का अनावरण किया गया। आईपीएल की तर्ज पर यह टूर्नामेंट 20 जून से आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और स्टार क्रिकेटर ईशान किशन के साथ जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव मौजूद रहे। मौके पर ईशान किशन ने कहा कि इस लीग से राज्य की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा।
6: अच्छी टीम्स होंगी, अच्छा क्रिकेट होगा। नॉट श्योर कि पहले साल ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी निकल जाएं, बट आई एम वेरी श्योर लुकिंग एट द टैलेंट विच जो झारखंड टीम के पास है, 100% बहुत अच्छे प्लेयर्स आगे आएंगे। और जैसे अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे प्लेयर्स अब धीरे धीरे हमारे टीम से बाहर जा रहे हैं, आईपीएल टीम्स में जा रहे हैं, इंडियन सेलेक्टर्स को परेशान कर रहे हैं कि हमें भी लो। सो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
2: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 30 जून से एसआईआर, 2,64,00,000 वोटरों की होगी जांच। प्रभात खबर लिखता है, हॉकी खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार की शिकायत, कोच सुधीर हटे। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, फर्जी निकासी की जांच ईडी करेगी, ईसीआईआर दर्ज। दैनिक जागरण के शब्द हैं, दोषी पाए गए बिजली निगम के 6 पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में ट्रेजरी निकासी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की ईसीआईआर। रांची, हजारीबाग और बोकारो सहित 6 जिलों में हुई है गड़बड़ी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय। आज सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना। रांची डीसी ने तेल कंपनियों के साथ की समीक्षा बैठक। पेट्रोल पंपों पर सुचारू आपूर्ति बहाल रखने के निर्देश। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा, राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर कल रांची में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन। विख्यात केडिया बंधु और श्रीजीत चटर्जी बिखेरेंगे सुरों का जादू। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण। आईपीएल की तर्ज पर 20 जून से शुरू होगा रोमांच का नया अध्याय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:44 और 48 सेकेंड्स हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम गीत संगीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए।

और दोस्तों अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म प्यार किया नहीं जाता। आवाजें साधना सरगम और बाबुल सुप्रियो की हैं, लेकिन इस गीत से पहले सुनते कुछ जरूरी संदेश।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे सारगम साधना सरगम और बाबुल सुप्रियो को। फिल्म का नाम था प्यार किया नहीं जाता। और दोस्तों इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:59 हुए हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। इसके लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हाँ फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया। मोहिनी!

नवासी में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

नई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध

0: और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: उसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी युवा दोस्तों का, सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही स्वीकार करें परमेंद्र कुमार मिश्रा की ओर से सप्रेम नमस्कार भी। श्रोताओं, दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए जो हमें उम्मीद, प्रेरणा और उद्देश्य देती हो। सुबह उठते ही एक छोटी सी अच्छी बात याद करें, जैसे किसी को या ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान देना, या सिर्फ एक शांत और सकारात्मक गहरी सांस लें, ताकि पूरा दिन उसी ऊर्जा और विश्वास के साथ दिन की शुरुआत हो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बताएंगे आपको आज के मौसम का हाल, शहर में हो रहे अनुष्ठान और सराफा बाजार के बारे में। तो हम आपको बता दें कि आज तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस होगा। आज भी बादल छाए रहने की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर शहर में हो रहे अनुष्ठान की बातचीत करें तो आज भगवत गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 पर। साथ ही दोस्तों, आज ओमेगा कप T10 प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी होगा अनाथ स्कूल मैदान में संध्या 5:30 से। सराफा बाजार की अगर हम बातचीत करें तो सोना 22 कैरेट 150,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी प्रति किलो 3,02,000 रुपये। और दोस्तों, अब हम गीत संगीत की ओर बढ़ते हैं और आज सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के बाद अब हम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि खबरों में छपी खबरों के अनुसार देश दुनिया का क्या कुछ है हाल। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं हजारीबाग भास्कर में छपी खबरों के अनुसार क्या कुछ कहता है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। अमृत जल योजना 8 साल से अधूरी, 1 साल और करना होगा इंतजार। शहर में 20,000 से अधिक घरों के लोगों को इस बार भी पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम की अमृत जल योजना 1.0 के कार्य को पूरा होने में अभी 1 वर्ष और लगेगा। बता दें कि अमृत जल योजना 1.0 का प्रोजेक्ट वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसकी लागत 517 करोड़ रुपए है। राज्य के 15 जिलों में जोरदार आंधी बारिश और वज्रपात से 5 की मौत, 11 घायल। राज्य के 15 जिलों में बुधवार रात और गुरुवार को मौसम खराब रहा। तेज आंधी बारिश और वज्रपात के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई। पलामू से 2, गढ़वा और लातेहार से 2 लोगों की मौतें हुई। गुमला के पालकोट में वज्रपात से गुरुवार को 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए थे। ऑक्सीजन के अभाव में महिला मरीज की हुई मौत। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला की मौत के बाद प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृतिका उत्तर शिवपुरी निवासी सरिता कुमारी थी, जो थैलेसीमिया से पीड़ित थी और नियमित इलाज के लिए अस्पताल आती थी। परिजनों के मुताबिक इलाज के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान उन्होंने और उनके परिजनों ने अस्पताल के कर्मियों से बार बार ऑक्सीजन लगाने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजनों का कहना है कि महिला मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, लेकिन अस्पताल कर्मियों की ओर से तत्परता नहीं दिखाई। महिला समेत 3 आरोपी 169 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार, 3 को भेजा जेल। यह कहना हजारीबाग भास्कर का। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पेलावल ओपी क्षेत्र के ग्राम पपरा में चल रहे अवैध ब्राउन शुगर कारोबार का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिंचाई की सुविधा नहीं, 90% किसान निजी साधनों से करते हैं खेती। प्रखंड के पिंडारकोन पंचायत मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती किसानी करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण खेती के साथ साथ स्वरोजगार को अपनाकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अनियंत्रित वाहन मोबाइल दुकान के अंदर घुसा, लाखों का नुकसान। यह कहना है हजारीबाग भास्कर का। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चरही के घाटो मोड़ के पास फिर हादसा हुआ। गुरुवार को हजारीबाग से रामगढ़ की ओर जा रही टाटा सुमो गोल्ड अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित मोबाइल दुकान में जा घुसी। हालांकि मोबाइल दुकान बंद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस जानकारी के बाद दोस्तों हम एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं। आइए सुनते हैं जाबाज फिल्म के गीत को, जिसे गाया है साधना सरगम और मनहर उदास ने।

इस खूबसूरत संगीत के बाद एक बार फिर से हम जानकारी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं देश दुनिया का हाल क्या कुछ कहता है प्रभात खबर। रांची धनबाद सहित अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन प्रभावित, रोटेशन पर आपूर्ति 100 से 500 रुपए तक का लिमिट तय। राजधानी के आसपास के इलाकों में ही कई पेट्रोल पंप पर तेल का स्टॉक खत्म मिला। राजधानी में जिन पेट्रोल पंप पर मिल रहा ईंधन वहां लग रही है लंबी कतार। देवघर में कई पंपों पर ड्राई डे जैसे हालात, पेट्रोल डीजल के लिए उमड़ रही भीड़। धनबाद में 26 पेट्रोल पंप में ड्राई की स्थिति, हंगामा और मारपीट की घटनाएं भी हुई। दुमका जिले में एक दर्जन से अधिक में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता अनियमित। पूर्वी सिंहभूम जिले में मांग बढ़ने से सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल दिए जा रहे हैं। झारखंड में 20 जून से एसआईआर 29 जुलाई तक प्रत्येक घर जाएंगे बीएलओ, यह कहना है प्रभात खबर का। आयोग ने देशभर में मतदाता सूची पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी। इसके तहत झारखंड समेत 16 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराया जाएगा। झारखंड में यह प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 29 जुलाई तक बीएलओ हर घर जाएंगे, यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने दी। 23 मई को अनमैप्ड वोटरों की सूची जारी की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई को राज्य के सभी मतदाता केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसमें संबंधित बीएलओ के नाम पर और मोबाइल नंबर भी अंकित होंगे, जिससे कि मतदाता अपनी मैपिंग के सीधे सीधे बीएलओ से संपर्क कर सके और राज्य में अनमैप्ड मतदाताओं की सूची की प्रति बीएलओ को भी दी जाएगी। हॉर्मुज में हमला कर एक और भारतीय जहाज को डुबोया। जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डुबो दिया गया। भारत के ध्वज वाला हाजी अली नाम का जहाज बुधवार को सुबह करीबन 3:30 पर ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। ट्रेजरी से अवैध निकासी केस में ईडी ने दर्ज किया ECIR। पुलिसकर्मियों के वेतन के नाम पर ट्रेजरी से हुई फर्जी निकासी के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से हुए 42.14 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में पुलिस थानों में दर्ज केस के आधार पर इसको आधार बनाकर ईडी ने ECIR दर्ज किया है। रामगढ़ का हेतमासरिया परिवार बना संयुक्त परिवार की मिसाल। रामगढ़ शहर में 6 पीढ़ियों से रह रहा बसंत हेतमासरिया का संयुक्त परिवार एक पाठशाला बन गया। यहां परिवार के सभी सदस्य निस्वार्थ प्रेम, नैतिक मूल्यों, सहयोग और अनुशासन का पाठ सीखकर जीवन जी रहे। अन्य चीजें भी हमें बदल सकती हैं, लेकिन हमारी शुरुआत और अंत परिवार से ही होता है। इसकी झलक इस परिवार में देखने को हमें मिलती है। इस पुश्तैनी घर में प्रवेश करते ही यह एहसास होता है कि परिवार जीवन का आधार है, स्तंभ है या जीने की प्रेरणा देता है। बसंत हेतमासरिया का संयुक्त परिवार इसी भावना को साकार कर रहा है। दोस्तों, आज विश्व परिवार दिवस भी है। परिवार में बढ़ रहा है आधार, जो हमें सुरक्षा देने के साथ ही परिवार में हमें प्यार और सहयोग भी प्राप्त होता है। चाहे हम कितनी भी दूर हैं, परिवार हर हमेशा हमें ताकत देता है। इस दिन हम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सराहना का भाव प्रकट करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके साथ जुड़ाव को और भी मजबूत करते हैं। इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार इसका थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। दोस्तों, इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से हम जानकारी की तरफ लौटते हैं और जानते हैं कि आज हजारीबाग जागरण क्या कुछ कहता है और किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। नशे के कारोबार का नया चेहरा, महिला सप्लायर के साथ 3 तस्कर दबोचे गए, ये कहना है हजारीबाग जागरण का। जिले में ब्राउन शुगर के बढ़ते कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिलावल ओपी क्षेत्र के परवा गांव से 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपित के पास से 169 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल भी बरामद किए। और दोस्तों, कई अखबार ने आज के सीबीएसई 12वीं बोर्ड के परीक्षा रिजल्ट को प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। दारू के ऋषभ ने कॉमर्स में हासिल किए 90%। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परिणाम निराशाजनक, ड्रीम प्रोजेक्ट पर उठे सवाल। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। आधुनिक संसाधनों, स्मार्ट क्लास, बेहतर आधारभूत संरचना और विषयवार शिक्षकों से लैस इन विद्यालय का इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। विशेष रूप

से विज्ञान संकाय का परिणाम चिंताजनक सामने आया है। जैकनजी स्कूल का शानदार प्रदर्शन। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में जैकन जील स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। संत स्टीफन्स स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस वर्ष भी सेंट स्टीफन स्कूल हजारीबाग के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते विद्यालय को गौरवान्वित किया। कैंपियन बेसिक एकेडमी के नेहा ने हासिल किए 96% अंक। इचाक स्थित कैंपियन बेसिक एकेडमी के विद्यार्थियों ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय के साथ पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। प्रियम जैन ने 90.2% अंक प्राप्त कर बढ़ाया परिवार का मान। समाजसेवी विजय लोहड़िया के पुत्र प्रियम जैन ने कॉमर्स स्ट्रीम में 90.2% अंक प्राप्त कर न केवल परिवार बल्कि समाज में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। पीटीसी चौक पर हाई टेंशन तार पर गिरा विशाल पेड़। शहर के व्यस्त पीटीसी चौक के पास बुधवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्य मार्ग किनारे स्थित एक विशाल पेड़ अचानक 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार पर गिर गया। पेड़ के गिरते ही इलाके में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई और सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। शनिदेव जयंती पर छठे वार्षिकोत्सव शुरू। यवनपुर पंचायत अंतर्गत मध्य गोपाली गांव में शुक्रवार को श्री श्री 108 शनिदेव जयंती सह छठे वार्षिकोत्सव का श्रद्धा और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। कट ऑफ डेट विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। एनटीपीसी की पकरी परवाड़ी कोल खनन परियोजना में कट ऑफ डेट संशोधन को लेकर चल रहा विवाद अब हजारीबाग हाईकोर्ट पहुंच गया है। करीब 2 वर्षों से आंदोलन कर रही युवा विस्थापित संघर्ष समिति उस समय राहत उन्हें मिली जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली। समिति का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के कारण बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार के युवाओं को नौकरी और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल रहा। इन दिनों बिजली से हजारीबाग के लोग हलकान हैं। दोस्तों, कुछ खबरें इस जगत से भी हैं। वर्षा शुरू होते ही गुल हो जाती है विष्णुगढ़ की बिजली। वर्षा व तेज हवा के साथ विष्णुगढ़ की बिजली व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है। बुधवार रात हुई वर्षा के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, जिससे लोग पूरी रात अंधेरे में रहने को विवश रहे। गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी दूर होने के बाद बिजली बहाल की जा सकी। बनासो पावर सब स्टेशन से विष्णुगढ़ आने वाली 11 के भी लाइन में खराबी आने से आपूर्ति बाधित हो गई थी। जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में आइए लौटते हैं। सुनते हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम को।

फिल्म का नाम है घातक। संगीत निर्देशन है आरटी बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान अखबार किन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से अपने अखबार में स्थान दिया है। चीन ने हमें अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर दिखाया तेवर। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने गुरुवार को बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान चेतावनी दी कि अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला तो यह चीन और अमेरिका के टकराव और यहां तक कि संघर्ष की ओर धकेला जा सकता है। कोडरमा में घर में घुस महिला की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या। कोडरमा के मिटको कॉलोनी में गुरुवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर 30 वर्षीय महिला नेहा राज की हत्या कर दी गई। वह शंभू राणा की पत्नी थी। कोडरमा के एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है, कई साक्ष्य मिले हैं, इसमें जो भी शामिल होगा उसे जल्द सलाखों के पीछे वे होंगे। ब्रिक्स देश वैश्विक व्यवधानों का हल खोजें जयशंकर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच गुरुवार को भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री का 2 दिवसीय सम्मेलन आरंभ हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ब्रिक्स देशों से भू राजनीतिक उथल पुथल से बेहतर ढंग से निपटने के लिए व्यवहारिक तरीके खोजने का आग्रह किया है। फर्जी निकासी की जांच ईडी करेगी, ECIR दर्ज, यह कहना हिंदुस्तान अखबार का। हजारीबाग में वेतन सहित अन्य मदों से फर्जी निकासी के मामले में ईडी ने इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज कर ली है। रांची के कोतवाली थाना और CID में दर्ज 3 FIR के आधार पर ईडी ट्रेजरी से फर्जी निकासी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का पहलुओं पर भी जांच होगी। मिस हजारीबाग के लिए हुआ ऑडिशन। तरंग ग्रुप हजारीबाग की ओर से आयोजित मिस हजारीबाग 2026 सीजन 9 का ऑडिशन गुरुवार को शहर स्थित डांस एंड मॉडलिंग स्टूडियो में संपन्न हुआ। ऑडिशन में लगभग 25 वरिष्ठ और जूनियर मॉडल्स ने भाग लेकर रैंप वॉक, पर्सनालिटी प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शिक्षिका को नहीं मिलेगी कोई भी प्रशासनिक पद। विनोद भावे विश्वविद्यालय PG रसायन शास्त्र विभाग के शिक्षिका डॉक्टर पुनीता अब भविष्य में विश्वविद्यालय किसी भी प्रशासनिक पद पर काबिज नहीं हो सकेगी। इनके कार्यशैली को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने सख्त निर्देश विनोद भावे विश्वविद्यालय को दी है। उक्त निर्देश के आलोक में विनोद भावे विश्वविद्यालय ने भी अधिसूचना जारी करने में तनिक भी विलम्ब नहीं की और राज्यपाल सचिवालय झारखंड रांची के निर्देशानुसार डॉक्टर प्रणीता को तुरंत प्रभावी कुल सचिव के पद से पदमुक्त कर दिया। खतियान ऑनलाइन नहीं होने से परेशानी। बरही के कुछ गांव में ग्रामीणों का खतियान ऑनलाइन नहीं किया है। बार बार अंचल कार्यालय में दौड़ लगाने के बाद मामला वहीं के वहीं रुका हुआ है। मोहम्मद कयूम ने कहा कि विजया डपोक और कोल्हुआ कला के आधे से अधिक लोगों का खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ है। विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मकता प्रतिभा। आईसेक्ट विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित 2 दिवसीय AI प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और प्रोफेशनल रिज्यूमे मेकिंग जैसी गतिविधियों में अपनी रचनात्मक क्षमता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। और दोस्तों, इस जानकारी के बाद एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं।
1: शील शील
0: आइए सुनते हैं आराधना फिल्म के गीत को, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत निर्देशन HT बर्मन का है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।
1: मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखे जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

फिल्म का नाम है दोस्तों मोम की गुड़िया, जिसे गाया है लता मंगेशकर और आनंद बख्शी ने। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, आज है 15 मई और आज जानते हैं कि भारत और विश्व में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के दिन 1925 में पहला अरेबिक कम्युनिस्ट न्यूज़पेपर शुरू हुआ। आज के दिन 1935 में मॉस्को मेट्रो जनता के लिए खोला गया। और आज के दिन 1957 में ब्रिटेन के सशस्त्र मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रशांत महासागर में श्री खल्लाबीड के नेतृत्व में पहले परमाणु बम का परीक्षण किया जाएगा। 1958 में आज के दिन सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 का प्रक्षेपण किया था। आज के दिन 1967 में बॉलीवुड अदाकारा रफीक हित का जन्म हुआ। आज के दिन 1974 में इसराइल के स्कूल में बंधक बनाया 16 किशोरों की मौत हुई और साथ में 3 फिलिस्तीनी भी मारे गए थे। आज 1995 में आज के दिन एलिसन गार्बिक्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर जगह वाली पहली महिला बनी। उन्नीस सौ 1999 में आज के दिन कुवैती सरकार द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था। 2001 में इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन बहुमत में है आज के दिन। और आज के दिन दोस्तों 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर मकानों का अधिग्रहण किया। आज के दिन 2005 में 20 साल बाद कनाडा से भारत का विमान उतरा था। और दोस्तों, आज जानते हैं कि आज कौन से ऐसे प्रमुख व्यक्ति जिनका आज जन्म हुआ। 1817 में आज के दिन देवेंद्र नाथ ठाकुर जी का जन्म, जो अध्यात्म विद्वान और धार्मिक नेता थे। और दोस्तों, आज के दिन 1907 में क्रांतिकारी सुखदेव, जो एक महान क्रांतिकारी शहीद थे, उनका जन्म हुआ। आज के दिन 1923 में जॉनी वॉकर, जो भारतीय हास्य अभिनेता थे, उनका जन्म हुआ। आज के दिन 1933 में टी एन शेषन जी का जन्म, जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आज के दिन 1965 में जन्मी राधा कृष्ण ने जो बॉलीवुड अभिनेत्री थी। और 1991 में आज के दिन में श्रीमती एडिथ क्रिशन फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और आज के दिन 1892 में हरि विनायक पाटसकर, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इनका आज जन्मदिन था। इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम गीत संगीत की दुनिया में लौटते हैं और आइए सुनते हैं यशुदास को।

दोस्तों, कल यानी 16 तारीख को वट सावित्री पूजन है और इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखा जाता है। प्रमुख त्यौहार जो है हिंदुओं का है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसमें त्रिमूर्ति का वास होता है, अर्थात वट वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और अमर माना

ज्यादा मान्यता है कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। पेड़ की लंबी आयु और गहरी जड़ें स्थिरता और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी पेड़ की छाया में देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। और दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समापन भी हो रहा है, तो जाते जाते आज के मोटिवेशनल थॉट पर विचार करते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक जो है वह समय होता है। हर समय कुछ न कुछ जरूर सिखाता है, इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा करो। सफलता पर विचार शुरू करना होता है, यानी आज से विचार करें कि कैसे हम सफल होंगे। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए और दूसरों के लिए वही करें जो खुद के लिए हम चाहते हैं। आज इसी इस विचार के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से आप हमारे अपने दोस्त प्रेमित्र को दीजिए अनुमति।

0: इसी के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त परमेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: Nine, eight, seven, six.

0: हेलो हजारीबाग।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 10:59 हुए हैं। अभी से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से। इसके लेकर बस थोड़ा सा इंतजार।
2: It's 11.
3: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। जगजीत सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अमित इंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में, संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

गहरा गहरा नथु खेरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल कवाली पॉप गीत और लोक गीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्चे से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्चे की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
4: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बिल्कुल, कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेंगे सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, AR रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता न कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे,
0: सच भाई
1: हुए हैं आज बेगाने,
2: हमी पर ताने कसते हैं, हमी पर ताने कसते हैं, हमी पर ताने कसते हैं।
3: अरे कैसे।

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता की बात हो।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत। यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में

कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं, गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गरीबियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं? और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

0: मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल का नाम है। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ ये कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, और ये सारी बातें।
1: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार,
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा, मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन, जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। सरकार की मंजूरी के बाद अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। 3 मई को हुई प्रारंभिक परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था। परीक्षा देने वाले छात्रों को अगले महीने की 14 तारीख तक परीक्षा का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि छात्र सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा मौजूदा ओएमआर आधारित पद्धति के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: अगले साल से

0: नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में रांची स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय में एमईसीएल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा और गैर ऊर्जा खनिजों की संयुक्त खोज को बढ़ावा देना है। बैठक में मंत्री ने बंद खदानों में मत्स्य पालन और मशरूम खेती के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बोकारो जिले के जारंगडीह सीसीएल परियोजना क्षेत्र का दौरा कर वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वास नीतियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने वहां कौशल विकास केंद्र के युवाओं से संवाद करते हुए आधुनिक और पारदर्शी कार्य संस्कृति अपनाने का आह्वान किया। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए जन समस्याओं के खिलाफ आगामी राज्यव्यापी आंदोलनों को धार देने की रणनीति बनाई जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचे ने झामुमो पर पिछले तीन चुनावों में हकमारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर झामुमो सिर्फ एक सीट का हकदार है और दूसरी सीट पर कांग्रेस का पुख्ता दावा बनता है।
2: 5 वोट लेके अब दूसरा उम्मीदवार दीजिएगा, 16 वोट लेके हम उम्मीदवार नहीं देंगे। बड़ा अजीब गरीब है, आप कैसे सोचते हैं? इसलिए हमने कहा कि लोगों की मंशा ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपनी चलाकी के चलते बीजेपी को सीट दे देंगे, बीजेपी को जिता के भेजेंगे। देखिएगा, अब देखिएगा, हमको लगता है ऐसे। मैंने कहा कि मेरा अपना पर्सनल, इसलिए अगर हम लोग को दोनों सीट निकालना है तब अंडरस्टैंडिंग करके ही लड़ना पड़ेगा।
1: राज्य में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू करने के लिए विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी जिलों में वैज्ञानिक तरीके से कचरा संग्रहण और प्रोसेसिंग व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। गांव स्तर पर डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा के उपयोग पर जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इस वृहद अभियान के लिए प्रदेश भर में 29,500 से ज्यादा BLO और विभिन्न दलों द्वारा 21,600 BLA तैनात किए जाएंगे। मामले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस देशव्यापी विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शत प्रतिशत शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
3: हम लोग प्रत्येक घर पर हम लोग सर्वे करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का जानन करते हुए हम लोग योग्य व्यक्ति का सबका नाम सूची में आएगी। किसका योग्यता नहीं है, मतलब क्लियर कट का मतलब है उनका भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 उम्र के ऊपर होना चाहिए, झारखंड में रहना चाहिए, उनका सबका नाम रोल में आएगी। इसलिए किसी का भी चिंता करने की आवश्यक नहीं है, हम लोग उसका इंश्योर करेंगे।
1: पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने भाजपा पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिससे आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
4: सरकार 5 राज्यों के चुनाव में लगी रही और अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो धीरे धीरे जो असलियत है वो जनता के समक्ष आ रही है और अब जो जिम्मेदारी है वो जनता पर डालने का काम अब किया जा रहा है। पहले से ऐसी परिस्थिति के साथ निपटने के लिए जो तैयारी की कमी उस पर कोई काम नहीं हुआ।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 3,02,000 रुपये प्रति किलो है। मौसम। रांची सहित राज्य के 14 जिलों में 17 और 18 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कहीं कहीं वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पलामू और गढ़वा को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में आज और कल तेज हवा और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। 20 मई तक राज्य के सभी जिलों का मौसम बदला रहेगा। क्रिकेट। जमशेदपुर के प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र का चयन भारतीय ए क्रिकेट टीम में हुआ है। वह 9 जून से श्रीलंका में आयोजित होने वाली एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के साथ मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान ए की टीमें खेलेंगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को आयोजित होगी पुनर्परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा अगले सत्र से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी नीट यूजी परीक्षा। कोयला राज्य मंत्री ने बोकारो के जारंगडीह सीसीएल क्षेत्र में वैज्ञानिक खनन और पुनर्वास की समीक्षा की। सीएमपीडीआई और एमईसीएल के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। रांची प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जारी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। राज्य में एसआईआर के तहत 2,64,00,000 से अधिक मतदाताओं का होगा भौतिक सत्यापन। सीईओ ने कहा मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा कोई भी योग्य नागरिक। और जमशेदपुर के क्रिकेटर कुमार कुशाग्र का इंडिया ए टीम में चयन। जून में श्रीलंका में खेलेंगे त्रिकोणीय श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया। आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथी आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था, ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं।

वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे।

0: बाहर जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे, तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना, ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा छुपन छुपाई पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था और हम दोस्त के घर का दरवाजा हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह है और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16:30, 15:15, 2:30, 3:45, 4:40, 75, 96, 97, 85, 80, 20, नंबर 25, गले में रस्सा।
0: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी, गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं, खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे हम लोगों के साथ रहते थे, मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था, दिन में बाहर धूप होने के कारण

और सब वहीं इकट्ठा होते थे। फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं, और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हो उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

0: बंद की पाया खोली।
1: किसने? मैंने? नहीं तो।

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़ कड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे कर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने की गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वे मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

हाय हाय मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ दे

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जन जागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंद दास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचाने लगे।

समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं,

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह धारण

0: 도하시 가부금 애진이 빈바다 가세 반대바다람 반대바다람.
1: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
2: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन

बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ।

0: में वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइस रॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
1: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
0: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
0: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिन सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद

0: बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
1: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास

0: को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विद्युत सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की

0: ईगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवी ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ बोलो ना।

0: कभी हुआ है और न होगा, देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा, देखो मेरे जैसा। मानो या न मानो।

0: आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2025-2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी योग्य विद्यार्थी फर्जी उम्मीदवारों की धांधली या शिक्षा माफिया की साजिशों के कारण अपने अधिकारों से वंचित हो जाए।
1: CBI तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर, सरकार की पूरा नेतृत्व सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख निर्धारित की है। विनय चौबे पिछले लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दुमका जिले में सखी मंडल की दीदियां आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। जिले के रानीश्वर प्रखंड में आज 4 महिलाओं को JSLPS की सामुदायिक निवेश निधि ऋण योजना के तहत बैटरी चलित रिक्शा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायत स्तर तक आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने के उद्देश्य से इस तरह के ऋण आधारित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और धान खरीद

0: जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग ने हजारीबाग जिलेवासियों से डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए सतर्क रहने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान डेंगू का प्रभाव बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां अपनाना जरूरी है। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आज इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि मरीज की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
1: लापरवाही से जान जा रहा। अभी एक देख रहे होंगे बच्ची जो बोल रही है, उनके पिताजी को इन लोग मार दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कैसे चलेगा अस्पताल और क्या होगा? महोदय से बात किए, नए नए आए हैं और उनको देख के लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हम भी बोले सख्त कार्रवाई करें और ये सरकार को चाहिए कि किनके नजर में हो रहा है।
0: रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में आज जूनियर डॉक्टरों ने वेतन भुगतान में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के चैंबर का घेराव किया और नो पे नो वर्क के नारे लगाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से वेतन आवंटन नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान झारखंड के कई जिलों में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज हवा की प्रबल संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये

0: बना रहे हैं ताकि जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
1: क्या बात है, मिलेट्स यानी फिर रागी है, जवार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
0: जी,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
0: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
0: बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचान आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और सच
1: में हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई थी।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से, और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सच में जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना, तो हमारी जो थकान है ना, वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया, तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत से फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनती है आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? रहता रेडियो दिन भर
0: रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली
1: जी, नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रही हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम सिंपली।
0: घर का काम करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: हमारा खेत में जाना पड़ता है।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउस वाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लिपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
0: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: हम चाहे सिलाई उलाई भी करते हैं।
0: क्या बात है, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
1: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
0: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
1: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
0: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
0: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
1: विविध भारती सुनते हैं जी?
0: जी। और आपने पसंद
1: दो महीना से छटपटा रहे थे हाँ, जी कब दो महीना पूरा होगा?
0: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए हाँ। अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, खास तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है। बहुत ही अच्छा है, आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात,
1: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकिया का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात है,
1: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना?
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकला ना करो रूपों की रानी, गोला रंग का लाना।

0: रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया होनी है। राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपित अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। इस मामले में ED पहले ही प्रमोद कुमार समेत 14 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और अब तक झारखंड, बिहार तथा दिल्ली में 52 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 44 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। रांची में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। रांची जिला बल के 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेवारियां सौंपी गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मेरी छुट्टियां बच गई, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहाँ जाएंगी मैडम जी?
4: कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी।
3: और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का?
4: अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी।
3: फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं।
4: सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न हैं, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं हैं। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट

के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैक बोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है। मम्मी आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो। मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती। अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा।

कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं फूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:29 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
3: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं था कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
3: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
4: अब सो जाओ।
3: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त

0: गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं, वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह
5: और सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
7: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
6: On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand. But nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
7: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake, and a bar of chocolate. He would eat it all by himself. He wouldn't offer anything to anyone. Just as he was beginning

0: और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 14 जिलों में ट्रेजरी से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। सरायकेला खरसावां जिले में टाटा कांडरा मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने आज गम्हरिया क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर सर्विस रोड किनारे वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम पहुंचते ही कई दुकानदारों और कारोबारियों ने स्वयं अपने अस्थायी निर्माण हटाने शुरू कर दिए, जबकि कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को तोड़ा गया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। सरायकेला स्थित जिला व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी परेश उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म सागर में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत दिया आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मौसम फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, संगीत मदन।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सावन को आने दो। आपने सुना इस फिल्म का गीत येसुदास की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धनवान फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

दस्तक फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं साथ ही फिल्म का गीत साधना सरगम और मधुश्री की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:30 होने को हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुन रहे सभी श्रोताओं को मीनाक्षी का प्यार भरा नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, अपने खेती बाड़ी के कामों को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और अभी आप सभी इस समय अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने के लिए बैठे होंगे, क्यों, सही कहा ना। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: श्रोताओं, अभी आप सभी अपने अपने खेती के जरूरी काम निपटा रहे होंगे, जैसे खेतों की गहरी जुताई करना, खेतों में गोबर डालना, ये सारी चीजें, ताकि जो भी गहरी जुताई करने से जो भी अनावश्यक रूप से कीड़े मकौड़े होते हैं वो ऊपर आ जाए और वो नष्ट हो सके। साथ ही अपने खेती बाड़ी से जुड़े मशीनों, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हार्वेस्टर, सीड ड्रिलर, पावर ट्रिलर या स्प्रेयर, ये सभी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। इनकी साफ सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे कि उसमें घास फूस जो लग जाते हैं उन्हें हटाना, मिट्टी जो लग जाती है उनको हटाना, उनकी साफ सफाई करना, और कटर और जाली की सफाई करना। ये सब करने से मशीनों में जंग नहीं लगती और इससे उनकी कार्य क्षमता भी बनी रहती है। मशीनों की नियमित रूप से साफ सफाई करने से, खास करके विशेषकर मौसम के अंत में, अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। इससे एक खेत से दूसरे खेत में जो संक्रमण होता है वो फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए मशीनों की साफ सफाई भी काफ़ी ज़रूरी होती है। आलू काटने वाली मशीन या फिर चारा काटने वाली मशीन हो या कोई अन्य स्वचालित मशीन हो, उनकी नियमित रूप से साफ सफाई करते रहना चाहिए। तो आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे और चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा। और इससे पहले हम लोग बातें कर रहे थे कि किस जो कृषि मशीनरी होती है, किसानों खेती में उपयोग करने वाली जो मशीनें होती हैं उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। इससे कई फायदे होते हैं, जैसे कि नियमित रूप से सफाई करने से मशीनों में जंग लगने, खराब होने से उसको बचाया जा सकता है। साथ ही उसमें जो साफ सफाई रहने से अच्छी तरह से मशीनें काम करती हैं, जिससे समय की बचत होती है और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और कई प्रकार के संक्रमण का खतरा भी कम होता है, जैसे कि एक खेत के जीवाणु दूसरे खेत में सफाई करने से नहीं जा पाते हैं। और श्रोताओं, अभी चल रहा है समय गर्मियों का और ऐसे समय में हमें अपने स्वास्थ्य का तो सही ख्याल रखना ही चाहिए, साथ ही हमारे जो पशुधन हैं उनका भी सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि उनके आहार प्रबंधन की बात करें तो गर्मियों में पशुओं को भूख कम हो जाती है।

0: इसलिए उन्हें पौष्टिक और आसानी से पचने वाला चारा देना चाहिए। साथ ही चारे पानी का समय भी बदले, सुबह में जल्दी दे चारा और शाम में देर से चारा खिलाएं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा हरा चारा दें, जैसे कि बरसीम घास हो गया, नेपियर घास हो गया, मक्का और लोबिया अधिक मात्रा में देनी चाहिए। दाने में वसा और प्रोटीन की सही मात्रा दें, जैसे सरसों की खली हो गई, सोयाबीन की खली हो गई, मक्का, जौ इत्यादि का इस्तेमाल ज्यादा करें। प्रतिदिन पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें, ताकि पशुओं में जो दूध उत्पादन और प्रजनन क्षमता बनी रहे। साफ और ठंडा पानी 24 घंटा उपलब्ध रखें। पशुओं को गर्मी में 50 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और साथ ही चारे में नमक की मात्रा भी बढ़ाएं, ताकि पशु ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके। दूसरी ओर आवास प्रबंधन की बात करें तो पशुओं को छायादार और हवादार स्थानों में रखें। पशुशाला की छत जो है वो टिन या कपड़ेल से ढका होना चाहिए और उसके ऊपर पराली या घास डाल दें, ताकि पशुशाला जो है वो अंदर से गर्म ना हो, उसमें गर्मी ना आए। और अगर संभव हो तो डेयरी शेड में कूलर या पंखे का भी उपयोग कर सकते हैं। पशुशाला की दीवारों पर जूट के बोरे भी लटका सकते हैं और उन पर पानी का छिड़काव करें, जिससे कि हवा ठंडी हो जाएगी। इसके साथ ही पशुशाला के फर्श को भी साफ और सूखा रखें और हवा का आना जाना अच्छा से होता रहे, जिससे कि जो पशुशाला है वो ठंडा रहे। साथ ही नवजात बछड़ों की बात की जाए तो उन्हें सीधे धूप से बचाए और उनके रहने की जगह पर जूट के बोरे लटकाए। ये सभी उपाय अपनाकर हम अपने पशुओं को गर्मी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं और उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकते हैं। श्रोताओं, आगे बातचीत में हम बने रहेंगे और पहले सुनते हैं ये जानकारी।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं एक महिला किसान जो काफी बेहतर तरीके से काफी समय से वो खेती बाड़ी के कामों को करते आ रही हैं। तो आपका नाम?
2: गीता देवी।
1: गीता देवी कहाँ की रहने वाली है?
2: मैं हरली के रहने वाली हूँ।
1: हरली के रहने वाले हैं। तो गीता देवी जी, आप कब से खेती बाड़ी के कामों को कर रही हैं?
2: 15 साल की उम्र से मैंने खेती कर रहा हूँ।
1: 15 साल की उम्र से खेती बाड़ी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: तो अभी आप अपने खेतों में क्या क्या लगाए हुए हैं?
2: लहसुन लगाए 5 डिसमिल जमीन में, 6 डिसमिल जमीन में।
1: मतलब अभी आप लहसुन लगाए हैं, निकल रहा है?
2: निकल रहा है।
1: कोड़ाई कर रहे हैं?
2: कोड़ाई।
1: और क्या क्या लगाए हैं?
2: कतारी लगाए हैं।
1: अच्छा, कतारी लगाए हैं। और
2: उसके बाद आलू लगाए हैं।
1: आलू निकल गया?
2: निकल गया मेरा।
1: अच्छा, कोड़ाई हो गया।
2: हाँ।
1: प्याज भी कोड़ाई हो गया?
2: लगले है,
1: अभी लगे हुआ है। हाँ। कोड़ाई हो रहा है?
2: हाँ, हो रहा है।
1: अच्छा, धीरे धीरे कोड़ा रहा है, अभी कोड़ाया नहीं है।
2: ठीक,
1: कोड़ा रहा है ना। तो और क्या क्या लगाए हैं? गर्मा फसल लगाए हैं?
2: गर्मा फसल,
1: लत्तेदार सब्जी लगाए हैं,
2: नेनुआ लगाए हैं, अभी कद्दू लगाए हैं, कोहड़ा लगाए हैं, करेला लगाए हैं, और चना लगाए। वो चना निकल रहा है अभी,
1: निकल रहा है बाजार में भी,
2: बाजार में भी जा रहा है, खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और फिर ये है लगाया हुआ और है ये है।
1: अच्छा, वो अभी तैयार हो,
2: अभी तैयार हो रहा है। 8 दिन के अंदर वो बाजार मार्केट में लेके बेचेंगे।
1: अच्छा, और क्या क्या लगाए हुए हैं?
2: मटर लगाए हैं, वो निकल रहा है अभी तक ले है ये होगा।
1: अच्छा, मटर भी निकल रहा है?
2: हाँ, मटर भी निकल रहा है।
1: टमाटर भी लगाए हुए हैं?
2: टमाटर अभी निकल रहा है, जब से सावन में रोपे हैं टमाटर, उस दिन से फल रहा है और अभी भी फल रहा है।
1: मतलब अच्छा फसल लगाए हैं?
2: अच्छा फसल लगाए हैं और खूब फल आ रहा, खूब फल रहा है। बैंगन लगाए हैं,
1: बैंगन लगाए, मिर्चा भी लगाए हैं,
2: मिर्चा भी लगाए हैं,
1: पालक भी लगाए,
2: पालक के साग भी लगाए हैं।
1: अच्छा,
2: मूली लगाए हैं, बीट लगाए हैं। अच्छा, और गाजर भी लगाए हैं।
1: गाजर
2: अभी निकल रहा है, बैसाख महीना चलेगा मेरा, जीले गाजर चलेगा।
1: तो मुझे ये बताइए गीता देवी जी कि आप भिंडी भी लगाए हैं?
2: भिंडी भी लगाए हैं।
1: तो आप मुझे ये बताइए कि भिंडी जो लगाए हैं उसकी मिट्टी की तैयारी कैसे की है?
2: वो पावर टिलर से जोतवा दिए।
1: पावर टिलर से जोतवा?
2: हाँ, जोतवा के सजवा दिए उसको।
1: उसको फिर सजाए?
2: सजाए, मजदूर लगाए कि अपने से सजाने।

0: के
1: अच्छा,
0: बाद
1: साथ में
0: उसको,
1: मतलब बड़ा खेत है तो कुछ अपने से भी किए तो साथ
0: हाँ
1: में मजदूर
0: हाँ
1: आदमी भी
0: मजदूर
1: लगा।
0: अपना, हाँ अपने भी कर लेते हैं, समय मिलता है तो अपने भी कर लेते हैं, नहीं सकते मजदूर भी लगा लेते
1: हाँ,
0: हैं।
1: मतलब बड़ा बड़ा खेत है तो
0: हाँ
1: उसमें आप
0: हाँ
1: अकेले नहीं हो पाता तो
0: हाँ
1: साथ में आदमी लगा के भी करते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: तो अच्छा, तो मैं भिंडी लगाए तो भिंडी कितनी दूरी पर लगाए, जैसे मिट्टी जमीन तैयार कर लिए, जोतवा लिए, फिर उसके बाद फिर उसको सजाए, जिसको बोलते हैं कि पात बनाना,
0: हाँ पाँच
1: तो पात
0: बार,
1: बनाए, तो पात बनाए तो फिर उसको फिर बीजा डाले होंगे, तो
0: हाँ बीजा डाले हैं,
1: बीजा कितने दूरी में, कि एक बित्ता की दूरी में डाले कि
0: एक एक
1: दो
0: बित्ता में
1: बित्ता,
0: लगाए हैं,
1: एक एक बित्ता का दूरी में
0: एक एक बित्ता
1: लगाए।
0: सार नजदीक में दिए थे, लेकिन आज फिर मेथी के साग दिए थे उसी में, तो मेथी के साग निकल गया, भिंडी अभी फलने का शुरू
1: अच्छा,
0: हुआ,
1: मतलब एक साथ में दो फसल डाल दिए, मतलब
0: दो
1: भिंडी
0: फसल।
1: भिंडी का बीजा भी डाल दिया और साथ में मेथी भी डाल दिए, तो
0: हाँ
1: मेथी आपका निकल गया
0: हाँ भिंडी
1: और
0: निकल रहा
1: भिंडी का
0: है,
1: जर्मिनेशन होकर
0: हाँ
1: के ऊपर आ गया। तो भिंडी कितने दिनों में जब लगाए, तो आप भिंडी कितने दिनों में जर्मिनेशन हो गया आपका, उसका जन्म कितने दिनों में जन्म गया?
0: 15 दिन में जन्म गया,
1: 15 दिन में
0: हाँ
1: जन्म
0: 15 दिन में पूरा एकदम जन्म के दुदू पते हो गया।
1: गया। अच्छा, 15 दिन में हो गया।
0: हाँ
1: अच्छा, तो आप उसके बाद उसको कितने दिनों में चाले, मतलब
0: कोड़ा
1: चार पांच
0: के,
1: पत्ता हो जाने के बाद
0: हाँ
1: चाले? हाँ,
0: कोड़ा किए,
1: कोड़ाई
0: कोड़ा
1: किए।
0: किए और 4-5 दिन वैसे ही 8 दिन तक रहने दिए, कोडले कोडले, उसके बाद उसको सोट दिए कुदारी से,
1: अच्छा,
0: कोड़ी से
1: मतलब
0: सल्फेट दे के
1: क्या,
0: पानी दे दिए।
1: अच्छा, तो मतलब सल्फेट दे करके उसको मिट्टी चढ़ा
0: हाँ
1: दिए, है माटी चढ़ा दिए आप,
0: हाँ
1: ताकि वो पौधा अपना जो ये
0: हाँ
1: बढ़े, और
0: गिरेगा
1: फिर
0: नहीं
1: हाँ, तो
0: उसको
1: उस
0: लगाएं, जब
1: हाँ
0: उसको जड़तर माटी रहेगा तब गिरेगा नहीं,
1: फिर उसके बाद उसको पटा दिए,
0: पटा दे।
1: कितने कितने दिनों में पटाते हैं
0: आजकल 8 दिन में,
1: आजकल? 8 दिन में,
0: आजकल 8 दिन में, 8 दिन में
1: जैसा
0: जैसे,
1: मतलब जैसा
0: हाँ
1: बीज
0: जैसे
1: रहा।
0: लूक बह रहा है ज्यादा,
1: हाँ,
0: जैसे लूक धूप ज्यादा उग गया तो 6 दिन में पटा देते हैं,
1: पांचों
0: और
1: दिन में भी
0: 5 दिन
1: पटा।
0: में पटा देते हैं।
1: अच्छा, और अभी सतपुतिया भी लगाए हैं या लगाएंगे?
0: करेला लगाए हैं,
1: करेला लगाए हैं, और
0: नेनुआ
1: सतपुतिया भी
0: लगाए
1: लगाए
0: हैं,
1: हैं,
0: सतपुतिया भी लगाए हैं।
1: सतपुतिया गाए हैं, तो सतपुतिया कैसे लगाए,
0: सतपुतिया मोटायार
1: बना के
0: बना के,
1: बना?
0: मोटायार बना के और ऊपरे माथा पर लगा देते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इतना एक एक बीता के गड्ढा डेढ़ बीता के, और उसमें गोबर डाल देते हैं, और गोबर डालने के बाद कीड़ा चाटता है किड़वा,
1: हाँ,
0: किड़वक चलते फोरट दे देते हैं, नहीं तो सब कीड़ा चाट देगा।
1: अच्छा,
0: ये आज है काल किड़वे ना गया है, पहले नहीं आता था कीड़ा, कोई चीज नहीं डालते थे, लेकिन ये कौन जमाना हो गया है कीड़ा आ
1: अच्छा, तो
0: जाए।
1: नीम का खली भी डालते हैं क्या?
0: नहीं नीम के खली कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हम नहीं मिलता, फोरट डाल के और गोबर डाल के और सतपुतिया एक एक हाथ पर लगा देते हैं,
1: अच्छा, एक एक कांत का
0: एक
1: दूरी पर
0: एक हाथ
1: लगाते
0: पर
1: हैं।
0: के दूरी पर, और लर चलता है ज्यादा, इतना लर चलेगा और इतना फलेगा कि कहने लायक नहीं।
1: अच्छा,
0: हम 5 मन तक सतपुतिया तोड़े थे, अपना समय रहता था उस समय, लेकिन अभी समय घट गया है, इस तरह से कम लगाते हैं।
1: हाँ, लेकिन आप काफी उसको लगाते हैं,
0: हाँ काफी लगाते थे लेकिन आजकल कम,
1: अभी भी लगाए हुए हैं
0: अभी भी
1: काफी,
0: लगाए
1: तो मतलब निकलता है काफी,
0: निकल।
1: अभी अभी तो समय है लगा देने का, तो
0: हाँ
1: अभी लगाते हैं,
0: हाँ
1: मतलब अभी जन्म गया है,
0: नहीं कल लगाए,
1: कल लगाए
0: कल
1: हैं।
0: लगाए
1: अच्छा, तो इसको कितने दिनों में पटाना पड़ता है?
0: तो जैसे आजकल सूखा रहेगा तब 5-6 दिन में पटाते हैं, 6 दिन में 8 दिन में, यार बारिश हो रहा है तो 10-15 दिन में पटाते हैं, बारिश से
1: मतलब
0: होगा।
1: इसको लगा के क्या तुरते तुरते भी पटा देते
0: हाँ
1: हैं?
0: तुरते पटा देते हैं, लगाए के तुरते पटा देते हैं।
1: अच्छा, लगा के तुरते पटाना भी
0: हाँ
1: जरूरी है ना,
0: हाँ
1: तो तुरंत जर्मिनेशन फूल जाता है, बीजा तो जल्दी निकलता है ना?
0: तुरंत निकल जाएगा वो बीजा,
1: अच्छा
0: सतपुतिया तुरंत निकल जाएगा,
1: अच्छा
0: बोधी का बिया जल्दी निकल जाएगा, बोधी भी लगाए हैं,
1: अच्छा, बोधी भी लगाए हैं,
0: बोधी फूल रहा है बोधी,
1: अच्छा, बोधी फुला भी रहा
0: हाँ
1: है,
0: फूल रहा है बोधी,
1: अच्छा, मतलब अब बोधी निकलना शुरू हो जाएगा
0: हाँ
1: आपका, है
0: शुरू हो
1: ना?
0: जाएगा,
1: तो
0: अन्यन्वा
1: अच्छा,
0: फल रहा
1: और
0: है।
1: टोटी भी लगाए हैं
0: हाँ
1: क्या?
0: टोटी कच्चू लगाए हैं,
1: अच्छा, कच्चू कैसे लगाए हैं?
0: कच्चू कतारी पात इतना इतना मोटा सज
1: अच्छा,
0: देते
1: मोटा
0: हैं,
1: पात करके बनाते
0: मोटा
1: हैं, जमीन को
0: पात
1: पहले ढीला कर लेते हैं, जोत लेते
0: जोत
1: हैं,
0: करके
1: जोत
0: उसके
1: करके,
0: बाद
1: और फिर
0: सजाते हैं,
1: अच्छा
0: उसके बाद एक उपछ उबच देते हैं,
1: अच्छा
0: उसके बाद लगाते हैं अतरा बड़
1: तो
0: बड़ टोटी हो
1: कितना
0: जाते हैं,
1: कितना गड्ढा करके लगाते हैं?
0: गड्ढा करते हैं कम से कम 3 बीता,
1: तीन
0: ती,
1: बित्ता
0: तीन
1: इतना,
0: बीता 3 बीता 4 बीता, उतना
1: अच्छा
0: जितना गड्ढा कीजिएगा ना उतना बैठेगा,
1: अच्छा
0: और
1: उतना गड्ढा
0: बैठेगा
1: बैठे,
0: पर साल लगाए से जोताए जो अच्छा से नहीं किया जोतने वाला जता

0: नहीं ठीक से दरवा मारते थे खुबिया से ठनाक ठनाक करता था, थोड़ा ऊपर ही हो गया, पर भी कोड़े किसी तरह खोदे खोदे बहुत बड़ा बड़ा टोटी निकला
1: अच्छा
0: कच्चू, बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा आलू तरह से गोल गोल कच्चू बैठ।
1: अच्छा तो
0: और
1: अबर अबर भी लगाए हैं उसको, तो उसको चालना भी पड़ता है क्या?
0: नहीं, घास रहेगा तो उसको जन्म जाएगा तो
1: तो
0: उसको
1: उसको
0: कोड़ देते
1: निकाय,
0: हैं,
1: हाँ
0: और
1: कोड़ाई भी
0: कोड़ के
1: करते हैं
0: कोड़ने के बाद
1: फिर से भी।
0: सल्फेट सल्फेट दे देते हैं। सल्फेट देने के बाद 2-4 पटन पटाते हैं, तैयार हो जाता है, उसको मट्टी लगा देते हैं कोड़ के और सोट देते हैं और पटा देते हैं, बस कच्चू एकदम बम बम रहेगा, खूब अच्छा रहेगा।
1: तो मतलब कच्चू का साग भी खाने के लिए हो जाता है
0: हाँ,
1: ना?
0: कच्चू का साग
1: तो
0: बहुत
1: कितना
0: बढ़िया
1: दिन में
0: माना, वो
1: जन्मता है?
0: आजकल तुरंत जन्म जाएगा, 8-10 दिन में जन्म जाएगा।
1: अच्छा जन्म जाता
0: हाँ,
1: है, मतलब लगा के तुरते पटा देते हैं,
0: तुरते पटा देते
1: चाल
0: हैं।
1: के फिर चाल उल करके, फिर आज जब
0: हाँ,
1: जन्म जाता है तो फिर उसके बाद चाल उल करके मिट्टी चढ़ा दिए
0: चढ़ा देते
1: और उसके
0: हैं।
1: बाद फिर पटा दिए
0: हाँ
1: सालपट उलपट दे करके।
0: हाँ
1: तो फिर ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है?
0: आजकल
1: दिनों में
0: रोपेंगे
1: मतलब
0: नहीं।
1: कहे कितना, मतलब दो अढ़ाई महीना में हो
0: हाँ,
1: जाता है या
0: ये
1: फिर?
0: बैसाख में रोपेंगे नहीं,
1: हाँ
0: बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन भादो से खूब
1: निकलना
0: शुरू
1: शुरू हो
0: हो
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: शौकीन कंदा कहते हैं उसको, ज्यादा गड्ढा खणते हैं नहीं, कम से कम एक ठेहुना 2-2 किलो के बैठाए हैं हम।
1: अच्छा तो साकिन
0: मैंने
1: कंदा भी लगाए
0: हाँ
1: हैं?
0: शौकीन कंदा भी लगाए थे और परसल भी लगाए हैं, से बेचे भी, और अभी तक ले बिया मेरा ये है, और फिर बाजार ने मार्केट ने बेचे, अभी रह गया, और जितने दिन 30 रुपये किलो घर बंदे दिए, 40 रुपया था, लेकिन मैंने सोचा कि हम तो ले बो नहीं सकेंगे, मेरा समय नहीं रह गया, तो घरे में हका के
1: अच्छा
0: उसको
1: आदमी बुला करके, व्यापारी को बुला कर
0: व्यापारी
1: दे
0: को
1: दिए?
0: घरे दिए,
1: अच्छा
0: और
1: घरे से
0: फिर
1: दे दिए।
0: रोपेंगे बड़का कंदा, 2-2 किलो को बैठाए थे, एक बार 2.5 किलो तक कंदा मेरा बैठा था, उसमें काट डाले थे, रोप दिए थे, जन्मा थोड़ा थोड़ा जन्मा, उसके बाद कोढ़ा कहते हैं चावल वाला भूसा, भूसा डाल दिए, बस हल्का पड़ा उसको और ज्यादा बैठा,
1: मतलब जमीन को एकदम जितना ज्यादा हल्का करिएगा बैठता अच्छा
0: हाँ,
1: है।
0: कोढ़वा डाल दिए थे, कोढ़वा हल्का पड़ा, और जो करोंज के जखन समय था मेरा, वो समय जो करोंज नहीं कहते हैं करोंज, उसका फूल बांट के दिए थे ने, मत कहिए कौन बैठवा बैठा था, एक आदमी मेरा
1: मतलब ये सब डालते हैं आप लोग बाहर
0: डालते हैं
1: खेत में,
0: खेत में।
1: तो इससे बैठता बहुत अच्छा
0: हाँ,
1: है।
0: करोंज के फूल दे दीजिए, कहना नहीं, एक यार ने 5 किलो 6 किलो तक के कच्चू बैठा था, हद मान लिया था, आर वाला कहता था कि बाहरे कच्चू
1: तो
0: बैठा,
1: कच्चू में रोग भी लगता है क्या? बीमारी लगता है?
0: पहले नहीं लगता था, आजकल लग रहा है,
1: तो
0: आजकल
1: आजकल
0: ज्यादा
1: लगता है तो फिर जाके दुकान में बोलते हैं तो दवाई दे
0: दवाई
1: देता है,
0: देता
1: तो
0: है,
1: उसको लाके छिड़काव कर
0: छिड़कते
1: देता है।
0: हैं। अब उस समय नहीं लगता था, उस समय पहले नहीं लगता था, कर उनके फूल दे देते थे, और दवाई के तो पहले मरमे नहीं जानते थे, लेकिन यही 10 साल के अंदर का हो रहा है, कीड़ा सब
1: मतलब
0: है,
1: कीड़ा का प्रकोप होता है तो दवा ला करके छिड़काव करते तो ठीक हो जाता है। मतलब आप कच्चू भी लगाए हैं, साकिन कंदा भी लगाए हैं,
0: सतभैया कंदा भी लगाए हैं,
1: सतभैया कंदा भी, मतलब कंदा का
0: पेक्ची भी लगाए
1: अच्छा
0: हैं,
1: मतलब पेक्ची भी लगाए
0: पेक्ची
1: हैं,
0: भी लगाए
1: तो साकिन
0: हैं।
1: कंदा भी उसी तरह से लगाते हैं?
0: साकिन कंदा का मोटा यार रहता है, कच्चू
1: अच्छा
0: का छोटा यार रहता है, पतला यार, और साकिन कंदा के मोटा यार रहता है।
1: अच्छा और कच्चू का?
0: कच्चू का साकिन कंदा से आधा
1: अच्छा साकिन कंदा से आधा।
0: आधा, और पेक्ची का एकदम आलू के तरह से,
1: अच्छा
0: पेक्ची के आलू के तरह से,
1: अच्छा पेक्ची का आलू के
0: आलू
1: जैसा।
0: के तरह से, यार ओल का खाली चौड़ा और ज्यादा गड्ढा नहीं, और ओल भी बैठता था मेरा, की
1: ओल भी
0: कहना
1: लगाए हैं?
0: ओल भी लगा,
1: तो ओल के लिए क्या करते हैं, वो गड्ढा करके और उसको लगा देते
0: हाँ
1: हैं?
0: गड्ढा करके लगा देते हैं, और गोबर पर रोप देते हैं, गोबर पर रोप देते हैं, उसके बाद कोढ़ा डाल देते हैं, भूसा चावल वाला कोढ़ा, उसे ज्यादा बैठ,
1: अच्छा
0: एकदम हसर हसर कोड़ने में लगेगा और बैठेगा,
1: अच्छा
0: काम सस्ता नहीं बेचते हैं, कोढ़ा रख देते हैं, कल बेचेंगे कोढ़ा,
1: अच्छा
0: मेरा एकदम बैठता है बिया का, आलू भी बैठता है, कच्चू भी
1: अच्छा वो
0: बैठता
1: सब फसल में डालते
0: है,
1: हैं
0: हाँ डालते
1: तो
0: हैं।
1: सिर्फ मिट्टी हल्का। तो कतारी भी आप लगाए हुए?
0: हाँ, हम कतारी भी लगाते थे, 40 करा तक के कतारी में पेरे थे उस समय, लेकिन अब अभी भी लगाते हैं, अभी इस समय भी
1: अभी भी लगाए हुए हैं,
0: अभी भी लगाए हैं।
1: अच्छा, तो कतारी लगाए हैं तो गुड़ भी बनाते होंगे?
0: गुड़ भी बनाते हैं।
1: अच्छा, रावा और ढेला दोनों?
0: रावा ढेला गुलरी सब चीज बनाते हैं। और कतारी मार्केट में समय रहता था मार्केटों में बेचते थे, पैसा नहीं रहता था उस समय।

0: कतारी 10 नैन 20 नैन लेके मार्केट में बेचते थे।
1: अच्छा, तो उससे भी अच्छी आमदनी हो जाती
0: है। अच्छी आमदनी,
1: बड़ी बढ़िया आमदनी।
0: हाँ, बढ़िया आमदनी। अभी तो 20 रुपये डाल कतारी बिकता है, 20 रुपये एक डाल।
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी मार्केट नहीं जा पाते हैं बेचने के लिए, अब घरे में गुड़ बना देते हैं और जो आता है उसको खिलाते हैं।
1: हाँ, हाँ, और बेचते
0: हैं, बेचते भी है।
1: तो गीता देवी जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जानकारी, और जानकारी थी गर्मा फसल कटोटी कच्चू कंदा की खेती के बारे में, और जानकारी दे रही थी गीता देवी। और ये मुझे, ये श्रोताओं, ये जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और इस जानकारी के साथ साथ हम आपको मौसम की भी जानकारी दे देते हैं। तो आज का अधिकतम तापमान देखिए 38 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस है। वहीं आर्द्रता की बात की जाए तो 38% है। तो ये रहा मौसम का हाल। और श्रोताओं, आप मौसम का हाल पता चल जाने से हम मौसम के अनुरूप ही अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं। श्रोताओं, हम अपनी खेती कई तरीके से करते हैं। आजकल अधिकांशतः हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो मल्चिंग विधि से खेती की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मल्चिंग विधि है क्या, या इससे खेती कैसे की जा सकती है। तो भाई, हम आपको बता दें कि मल्चिंग विधि की खेती जो है वो मिट्टी को प्लास्टिक शीट से ढकने का एक ऐसा तकनीक है जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं उगते हैं, और सिंचाई से में भी पानी की बचत होती है। ये तकनीक, इस तकनीक से फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। मल्चिंग विधि के कई फायदे भी हैं श्रोताओं। ये विधि जो है मिट्टी के पानी, मिट्टी से जो पानी का वाष्पीकरण है उसको रोकती है। इससे मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, और जमीन ढकी होने के कारण अनावश्यक रूप से खरपतवार नहीं पनप पाते हैं, जिससे निराई गुड़ाई में भी जो खर्च लगता था पहले वो कम होता है, खर्च बचता है। और बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, इससे भी हमारे 50% से अधिक पानी की बचत होती है। और जैविक मल्च जो होता है वो समय के साथ सड़ करके मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है, साथ ही फसलों की पैदावार और उसकी गुणवत्ता में भी काफी सुधार होता है। इसके साथ साथ देखिए श्रोताओं की ये तेज बारिश और हवा में जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है वो बहने या उड़ने की भी से भी बचाती है, और इसमें कीड़ों का प्रकोप भी कम होता है। हम जैविक मल्चिंग विधि में प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे सूखा पत्ता या घास ले लीजिए, लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल करते हैं, भूसा या नारियल की भूसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मिट्टी में जाकर के धीरे धीरे एक वो मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं, जिससे कि पौधों को पोषण भी मिलता है और साथ में मिट्टी के संपर्क में आने से फसल खराब, मल्चिंग विधि से फल जो है वो मिट्टी के संपर्क से बचता है और फसल खराब नहीं होता। साथ ही मिट्टी में अवशेष के कारण पोषक तत्व तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, इससे फसल को बेहतर पोषण मिलता है। इस प्रकार कहिए तो मल्चिंग विधि जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, जिससे किसानों को का समय, मेहनत और पैसा तीनों की बचत होती है। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से मुझे मीनाक्षी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: शाम के 6 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। खूंटी जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज रांची खूंटी मुख्य मार्ग स्थित जायसवाल ढाबा के समीप जिला खनन पदाधिकारी ने अपनी टीम के साथ छापेमारी कर 176 CFT पत्थर चिप्स लदे एक हाफ डाला टिपर वाहन को जब्त किया। कार्रवाई सुबह लगभग 11:30 बजे की गई। प्रशासन ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुमला में आज जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर विषय पर एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उत्पादों के ऑनलाइन प्रचार प्रसार की जानकारी दी गई। सिमडेगा थाना क्षेत्र के ठाकुर टोली डिफेंस कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशाल पासवान नामक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। SDPO बैजू उराव ने बताया कि आरोपी के कमरे से 5.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। मामले के दूसरे आरोपी सुरमणि कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लोहरदगा जिले में आज दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां मकानों पर गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि वज्रपात की चपेट में आने से एक दुधारू पशु की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

हमारी सभी बहनों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम अंगना में। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। बहनों, एक सच्चे परिवार की परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखा जाए तो परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है, परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है, कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है, भय नहीं भरोसा होता है, आग्रह नहीं आदर होता है, मधुर संबंध होते हैं और परिवार में अर्पण नहीं परंतु समर्पण होता है, यही है सच्चा परिवार। बहनों, आप सोच रही होंगी आज हम परिवार की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है विश्व परिवार दिवस। यह हर साल 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिवस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य है परिवार को महत्व देना, उनका उत्थान और उनसे जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। प्रत्येक वर्ष एक थीम के साथ इस दिवस को मनाया जाता है और 2026 की थीम है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। बहनों, परिवार दिवस पर चर्चाएं और भी करेंगे। सुनते हैं ये खूबसूरत सा पारिवारिक गाना, जहां परिवार की एकजुटता को मधुर संगीत में पिरोया गया है।

0: को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: बहनों, एक सशक्त परिवार के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत खास होती है। महिलाएं ना सिर्फ परिवार की देखभाल करती हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से परिवार को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक नारी परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। वह हमेशा प्रयास करती है उनके बच्चे नैतिक मूल्यों को समझे, ईमानदारी, दया, अनुशासन और धैर्य जैसे नैतिक सिद्धांतों पर वे उन्हें चलना सिखाती है। उनके द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार एक मजबूत पीढ़ी की नींव रखते हैं। एक महिला परिवार की भावनात्मक रीढ़ होती है। वह परिवार के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य, सहयोग और प्यार का वातावरण बनाए रखती हैं। एक परिवार में सभी उम्र के लोग रहते हैं, तो ऐसे में रिश्तों को बांधना उन्हें बखूबी आता है। आपस में रिश्तों को जोड़कर रखना, उन्हें हर प्रकार से सहयोग करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, जिसे वह बखूबी निभाती भी हैं। बहनों, आज की नारी की बात करें तो आज वे ना सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सहयोग कर परिवार की आय में योगदान भी दे रही हैं। वे एक कुशल प्रबंधक भी होती हैं, जो घरेलू बजट और संसाधनों को परिवार के आय के अनुरूप ही ढालती है, ताकि किसी भी सदस्य को कोई परेशानी न हो। परिवार के स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखना, ये भी महिलाएं इनमें भी अहम भूमिका निभाती हैं। महिलाएं अगर शिक्षित हो तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है परिवार पर। वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और परिवार को आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करती हैं। कहा भी गया है कि एक महिला के बिना परिवार अधूरा ही रहता है। वह परिवार की आधारशिला है, जो प्यार, समर्पण और सूझबूझ से एक घर को स्वर्ग बनाती है। बहनों, ये तो हुई परिवार की बातें। अब आगे आपके लिए हम लेकर आए हैं शिक्षा से जुड़ी कुछ बातें। तो सुनवा रहे हैं वार्ता, विषय है महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार। वार्ताकार हैं सीमा सहाय।
2: वर्तमान युग में महिलाओं की शिक्षा एवं क्षमताओं का संवर्धन न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण है, बल्कि देश के आर्थिक एवं समग्र विकास का एकमात्र एवं सर्वोत्तम तरीका है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व शिक्षा शास्त्री डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि शिक्षित महिला के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ ही होती है, अतः महिला शिक्षा का महत्व द्विगुणित हो जाता है। यह सही है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है। महिला सशक्तिकरण होने पर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास में पुरुषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं को बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश को लाभ होगा। आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। दुनिया में आज भी बेटियों को बेटी की तरह ही शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार जरूरी है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार से न केवल आर्थिक स्थिति बढ़ाई जा सकती है, बल्कि मातृत्व और मृत्यु दर में भी

कमी लाई जा सकती है। इस तरह से बालिका को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा की अहम भूमिका है। यही नहीं, शिक्षा के बल पर ही ग्रामीण बालिकाएं समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, भेदभाव, शोषण एवं उपेक्षा जैसे दंशों का डटकर मुकाबला कर सकती है। इस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा सकती है। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं को साक्षर एवं शिक्षित करके ही उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाया जाना संभव है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए विकास के विभिन्न आयामों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देती हैं। यही नहीं, बालिकाएं शिक्षित होकर परिवार के लिए कमावपुत बनकर परिवार को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण बालिकाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार एवं सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती है। इस तरह बालिका शिक्षा को परिवार, समाज एवं देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगी। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात पूर्ण साक्षरता प्राप्त हेतु 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकारों में समावेशित किया गया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मिड डे मील, आंगन पाठशाला जैसे अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित कर रही है। इन सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के फलस्वरूप पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कम हो रहा है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर व मिडिल स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा के प्रसार प्रचार के कारण बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर में भी कमी आई है। अतः बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर अभी भी बालकों की अपेक्षा काफी अधिक है, जिसको नियंत्रित करके ही बालिकाओं का भविष्य सुखमय उज्जवल बनाया जाना संभव है। आज भी शिक्षा के बारे में लैंगिक अंतर बना हुआ है तथा निरक्षर महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। महिला साक्षरता एवं शिक्षा के मार्ग में अनेक अवरोधक हैं, जिनको दूर करके ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम गरीबी एवं निम्न आय स्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा के लिए सबसे बड़ा बाधक है। देश की लगभग 26 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इन गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था सर्वप्रथम प्राथमिकता है। सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों एवं कुरीतियों की वजह से भी ग्रामीण बालिका और महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा एवं शिक्षा पर फिजूल खर्ची मानना जैसे तत्व भी ग्रामीण शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बेटी पराया धन है, यह संकीर्ण मानसिकता भी बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करती है। इसके अलावा ग्रामीण बालिका विद्यालयों की कमी, विद्यालयों की दूरी, पाठ्यक्रमों में रोचकता का अभाव, घरेलू दायित्व एवं अभिभावकों में जागरूकता का अभाव जैसे तत्व भी बालिका शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंचाते हैं। ग्रामीण जन बालिका शिक्षा पर व्यय को फिजूल खर्ची मानते हुए बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं। देश

0: विकास की कुंजी ग्रामीण बालिका शिक्षा एवं महिला साक्षरता ही है। आज ग्रामीण लड़कियों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा एवं दोयम दर्जे के व्यवहार को परिवर्तित करना जरूरी है। इस परिवर्तन के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग, संवेदना एवं सहानुभूति परम आवश्यक है। गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी ग्रामीण महिला शिक्षा में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये संगठन महिलाओं में उनकी क्षमता, योग्यता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण महिला एवं बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करके देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। किसी भी समाज या देश के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति, परिवार और समाज के उत्थान में एक साथ उपयोगी भूमिका निभाती है। शिक्षा न केवल हमारे नैतिक विकास में मददगार होती है, बल्कि हमारी भौतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। विषय था महिला शिक्षा ग्रामीण विकास का आधार। वार्ताकार थी सीमा सहाय।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बहनों, आज मनाया जा रहा है विश्व परिवार दिवस। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि एक मजबूत समाज के निर्माण में एक खुशहाल परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

चश्मे बद्दूर आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत यशोदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राजा भैया फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर रंजन के बोल संगीत नदीम श्रवण का।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंगारे फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाजों में। इस गीत को लिखा मदन पाल ने और संगीत दिया सुखविंदर सिंह ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताल से, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:54 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कार पोलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। यह निर्णय ईंधन की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है।
2: यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से 14 जून 2026 तक शहर में डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकानों, परिवारों और रहवासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इधर रांची नगर निगम द्वारा जनगणना कार्य में लगे पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधारित किट का वितरण किया गया। इधर गुमला जिले के उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी दिलेश्वर महतो ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों के निर्माण, संसाधनों के समुचित वितरण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड ट्रेजरी महाघोटाले को राज्य में संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर मामला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 14 जिलों में ट्रेजरी से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की आशंका है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। खूंटी के बरसा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दो दिवसीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हो गया। समारोह के दूसरे दिन 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 1400 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि युवा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं।
3: इस देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पूर्व चर्चा का एक अभिनव प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए विद्यार्थियों में एक नई विश्वास की जगह कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अब भारत में शिक्षा का प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाला कल की जिम्मेदारी को लेने के लिए आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयत्न आगे करते रहे।
1: राज्य के बहुचर्चित ग्रामीण विकास विभाग टेंडर घोटाला मामले में आरोपी अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने आज रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र में पीआईबी रांची द्वारा अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पीआईबी रांची भुवनेश्वर के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में दूरदर्शन, यूआईडीएआई, सीसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और नाबार्ड समेत विभिन्न केंद्रीय संस्थानों ने अपनी उपलब्धियों और जनसंचार गतिविधियों की जानकारी साझा की। वक्ताओं ने स्थानीय भाषाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं सूचनाओं को आम लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। इस अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यालय प्रमुख डीसी हेम्ब्रम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव पद पर नवप्रणत अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर नवप्रणत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जनहित, सुशासन और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गणेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों की जानकारी साझा की।
4: स्थानीय समस्याओं में भी बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो स्थानीय लोग जूझते रहे, तो इन सारे चीजों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम किसानों की समस्याओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर के प्रखंड कार्यालय में बहुत बड़ा धरने का आयोजन करेंगे और हम जनता की समस्या के समाधान के लिए डिमांड करेंगे। सरकार अपने ही किए गए वादों को पूरा करे, ये बात हम सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं।
1: सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां मुख्य मार्ग स्थित गोविंदपुर मोड़ पर जल्द ही आधुनिक बस पड़ाव की सुविधा उपलब्ध होगी। जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ जिला परिषद के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
5: गोविंदपुर ग्राम में यहाँ बस स्टैंड बनने से आसपास के सभी ग्रामीणों को इसका सुविधा होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ आवागमन का भी यहाँ सुविधा होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बस स्टैंड जो तय समय है उसी के अंदर इसको पूरा करना है। इस कार्य के लिए दोनों सांसदों को इसका आवंटन किया गया है।
1: रांची में 17 मई को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने जिले के 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज रांची सहित 14 जिलों में तेज हवा गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर राजधानी रांची सहित कई जिलों में दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश जारी है। वहीं लोहरदगा में आज आए तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तरी हिस्सों को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचत को लेकर उठाया बड़ा कदम। वर्चुअल सुनवाई और कार पुलिंग समेत कई उपाय लागू। राज्य में जनगणना 2027 का अहम चरण कल से होगा शुरू। रांची सहित सभी जिलों में 14 जून तक चलेगा डोर टू डोर मकान गणना और हाउस लिस्टिंग अभियान। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्रेजरी घोटाला की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। खूंटी में 1400 मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। और झारखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को तेज आंधी और बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: महागांव में हम ठाकुर गंगटी में विधायक ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पिछले दिनों एसआईआर

0: और जो राजनीतिक पार्टी के डीएलए हैं वो लोग आप लोग से संपर्क करके आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में हो, सही जो मतदाता है वो छूटे नहीं, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हम लोग अपने वोटों की रक्षा कर पाए और उसमें प्रशासन और डीएलए है वो आप लोगों के साथ काम करेंगे।
1: महागामा विधायक सह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मेहगामा प्रखंड के परसागांव में सामुदायिक आधारित क्लाइमेट स्मार्ट अवसंरचना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्घाटन के माध्यम से क्षेत्र के 60 से 70 एकड़ जमीन वाले किसानों को सुविधा मुहैया होगी। सोलर सिस्टम आधारित इस परियोजना में जीएसपीएल एवं प्रदान संस्था के सामूहिक रूप से सहयोग है। इस दौरान मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा,
2: कैसे पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए किसानों को उपलब्ध हो इसका एक प्रयास है। डीएसएलपीएस और प्रधान ने मिलकर फरसा गांव में सोलर लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट का हस्तांतरण किया है। अपने सीएलएफ की राशि प्रधान के सहयोग लेते हुए इसको आज पूर्ण किया है, जिससे करीब 65 एकड़ जमीन इनके गांव का सिंचित हो गया पूरे साल के लिए। मैं इसके लिए फरसा गांव की सभी दीदियों को बधाई देती हूँ।
1: गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में दो पहाड़िया आदिवासी महिला की मौत का कारण झोलाछाप डॉक्टर बना है। 10 दिन पहले प्रसव कराने आई पहाड़िया महिला रूबी मालतो के ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति बिगड़ गई। घटना के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना के ठीक 7 दिन बाद ही बुआरीजोर के कुसुम घाटी में झोलाछाप चिकित्सक के चक्र में आदिवासी महिला की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह धर्मी पहाड़ी को राजेंद्र शाह नामक चिकित्सक ने टाइफाइड की वजह बताकर सुई लगा दिया। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और महागामा रेफर अस्पताल लाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। आरोपी चिकित्सक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोड्डा जिले में लगातार सड़क हादसे को देखते हुए प्रशासन एवं पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अडानी समूह की ओर से भी आवश्यक पहल की गई। एसपी मुकेश कुमार ने लोगों को सीट बेल्ट, नशा कर वाहन न चलाने, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने आदि की सलाह देते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वो अपनी जान केवल इसी माध्यम से बचा सकते हैं।
3: लोगों में यह लगातार देखा जा रहा है कि वो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसके वजह से अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर एक थाना में इंस्ट्रक्शन दिया गया, हर एक पेट्रोलिंग पार्टी उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रैंडमली किसी भी जगह पे चेकिंग अभियान चलाएंगे। कोशिश में है कि लोगों के दिमाग में यह बात चले, अगर सड़क पे चल रहे हैं तो किस किन नियमों का हमको पालन करना है ताकि जो बढ़ता हुआ दुर्घटना है कम किया जा सके।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
4: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम झनकार।

इंग्लिश विंग्लिश आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान स्वानंद किरकिरे और साथियों की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दिल चाहता है फिल्म से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:30 पे हैं, प्रस्तुत है खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन है वंदना श्रीवास्तव एवं माणिक चक्रवर्ती का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव कुमार।

0: खेलेंगे खेलेंगे
1: शान से
0: जीतेंगे जीतेंगे
1: जी जान से
0: खेलेंगे खेलेंगे
1: शान से उड़ेंगे बढ़ेंगे आसमान से
2: आसमान से।
1: कुछ लोग सुबह नींद से उठते हैं और कुछ लोग सपनों के पीछे दौड़ने के लिए उठते हैं, कुछ लोग सिर्फ मैच देखते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं।
3: ना टाइम आएगा उठ जा अपनी राख से टूट जा अब तलाश में परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा आएगा अपना टाइम आएगा।
4: क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं है, वो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, है ना वंदना?
1: हाँ हाँ।
4: हर बार गिरने के बाद फिर उठता है और हर हार के बाद कह उठता है अभी खेल बाकी है।
1: नमस्कार खिलाड़ियों, दोस्तों आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से शुरू हो चुका है जोश और जज्बे का एक और सफर। मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव
4: और मैं हूँ माणिक चक्रवर्ती। तो दिल की सीट बेल्ट बांध

0: रंग लीजिए क्योंकि आज का सफर होगा पूरी तरह से स्पोर्ट्स वाला, पूरी तरह से जोश वाला।
1: दोस्तों, खेल की असली धड़कन तो बस मैदान में ही सुनाई देती है, जहां सांसें तेज होती है, दिलों में आग होती है और आंखों में सिर्फ जीत दिखाई देती है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, जो है ग्राउंड रिपोर्ट। खिलाड़ियों, ओमेगा ग्रुप ट्रस्ट एंड झारखंड एसोसिएशन के तत्वाधान में ओमेगा कप की शुरुआत होने जा रही है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट इसी 15 मई से 25 मई तक होने जा रही है, जिसमें ग्राउंड पार्टनर बने हैं अनादा कॉलेज हजारीबाग, जहां विनर को 150,000, रनर अप टीम को 75,000 दिया जाना है। जोश हाई है और इसी जोश को आप तक पहुँचा रहे हमारे सहयोगी मानिक चक्रवर्ती। तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सुनते हैं इनसे ग्राउंड रिपोर्ट।
2: हमारे खिलाड़ियों के लिए जानकारी देते इस 15 से 25 तारीख के टूर्नामेंट का।
3: अपना जी, मेरा नाम शादाब अंसारी है, ओमेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन हूँ। और ये ओमेगा ग्रुप एक टूर्नामेंट करा रही है, ओमेगा ग्रुप एंड झारखंड एसोसिएशन मिलके, जिसका आगाज जो है वो कल से है।
2: लेकिन उससे पहले जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ
3: जी,
2: तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि खिलाड़ियों के लिए ऐसी सोच का उद्भव हो जाना और फिर झारखंड खेल एसोसिएशन से उम्मीद रखना और साथ पाना, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी तैयारी चल रही है?
3: देखिए, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और दिल में, दिमाग में और खून में वो हजारीबाग बसा हुआ है।
2: क्या बात।
3: फिलहाल जो है मैं दो जगह हूँ, दुबई और दिल्ली रहता हूँ, तो जब भी बाहर कहीं जाता हूँ तो ऐसा फील होता है कि काश हजारीबाग का मौसम हो, काश हजारीबाग के लोग हो और कुछ करने का। हाँ, उसके बाद से मैं लगभग 25 सालों से बाहर हूँ और बाहर रहने के बाद भी ये फील होता है कि हजारीबाग इज द बेस्ट।
2: ये सपना
3: खिलाड़ी को अभी एक्चुअली क्या है, एक बार मैं यहाँ खेलने के लिए आया था लास्ट ईयर, एक टूर्नामेंट खेला था पगमल में, तो टूर्नामेंट होने के ड्यूरेशन में देखा कि लोग ना नशे में बहुत इन्वॉल्व हैं, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तीसरा एजुकेशन की बहुत कमी है, और इन दोनों चीज की कमी होगी तो नशा होगा। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट का पहला जरूरत है, दूसरा ये है कि कवरेज जितना ज्यादा होगा हम लोग शायद उतना अच्छा कर पाएंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ एनजीओ को भी हमने बोला है कि आप हमारे साथ सपोर्ट में आइए और एनजीओ सपोर्ट करेगी तो हम साल भर काम कर पाएंगे।
2: अब आगे खिलाड़ियों के लिए, खासकर क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जो नए हैं और गांव से और विभिन्न शहरों से सुन रहे हैं?
3: क्रिकेट खिलाड़ियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो पैसे के लिए नहीं खेलें, जो चलन हजारीबाग में चल रहा है। पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण के लिए हो सकता है, लेकिन खेल, कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग वो कई सालों तक चलता है। तो खेल जो है वो अनुशासन में लाएगा और हम उनको कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म दे जिसमें सारी चीजों का अनुसरण किया जा सके।
2: बहुत बहुत शुभकामनाएं, खेलेंगे शान से।
3: शुक्रिया
2: खिलाड़ियों की ओर से और कार्यक्रम की ओर से
3: शुक्रिया
2: आपको कि ये जो सपना है खिलाड़ियों के लिए आपका वो पूरा हो और दुबई तक इसकी धमक पहुंचे।
3: जी बिल्कुल,
2: अच्छा काम अपने शहर के लिए किया।
3: बिल्कुल शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
3: थैंक यू।
2: जब 15 तारीख मतलब आज ही खेलेंगे शांसे के दिन से ही शुरुआत होने जा रही है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम खिलाड़ियों से भी अब बातचीत करते चलते हैं। सबसे पहले है फैजल साहब। फैजल साहब, खेलेंगे शांसे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए किस तरह से ये कार्यक्रम कल शुरुआत होगी और क्या क्या आपको इसमें करना पड़ रहा है, कौन कौन सी टीमें हैं, विस्तार से हमारे खिलाड़ियों को बताएं।
4: देखिए, हम लोग जो ओमेगा कप है उसमें टोटल 16 टीम है, 16 टीम में बहुत सारे जो बाहर से भी आए हुए हैं टीम के ये, लेकिन बाहर जैसे कि कुछ अहमदाबाद से है, कुछ राजस्थान से है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग का रूल था कि हजारीबाग प्रीमियर लीग है तो हजारीबाग के ही प्लेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो जिसके लिए हम लोग 7 प्लेयर जो है हजारीबाग के ही रखे हैं, रूल बना दिए, और 4 प्लेयर आप कहीं से भी ले आइए। ठीक है, टोटल 16 टीम है और विनर को आपको 1,50,000 रुपए जैसे आपको पता होगा और रनर अप 75,000 रुपए है। और जी मैं ऑर्गेनाइजर टीम से खेल रहा हूँ, ओमेगा पैंथर के तरफ से वाइस कैप्टन हूँ और सारा अरेंज देख रहा हूँ थोड़ा ये है, बाकी ऋतुराज जी है और देखिए कल मतलब कंपटीशन तो बहुत टफ होगा, टाइट होगा,
2: टेक्निक्स भी बहुत, हाँ
4: ये भी है, और चीफ गेस्ट भी अच्छे हैं, बहुत लोग जैसे सांसद जी आ रहे हैं और हजारीबाग को थोड़ा आगे बढ़ाइए।
2: क्या कहेंगे
4: खिलाड़ी से? यही कहना चाहेंगे कि आप पूरा जोशो खरोश से खेलिए, लेकिन अपना होश मत खोइए, पूरा डिसिप्लिन में खेलिए। हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे डिसिप्लिन से पूरा मैच करवाएं और बाकी सब जो है अच्छे से करने के लिए आप लोग भी सहयोग करें।
2: तो पैंथर ग्रुप को यानी आपके ग्रुप को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे खिलाड़ी
4: जी
2: आपको शुभकामनाएं देते हैं,
4: खेलेंगे शाम से, जीतेंगे शाम से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद,
4: थैंक यू,
2: बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।
4: ठीक है, शुक्रिया।
3: मेरा नाम अर्णव कुनार है।
2: कहाँ से आप आए?
3: मैं हजारीबाग का हूँ। मेरा जेवियर टाइटंस टीम में हम लोग खेल रहे हैं।
2: टाइटंस?
3: हाँ।
2: कैप्टन कौन?
3: मैं हूँ।
2: खुद कैप्टन?
3: हाँ।
2: तो कैप्टन साहब क्या तैयारियां हैं बस 15 से 25 तक क्या?
3: हाँ, हम लोग
2: चले,
3: हम लोग कल भी शाम में प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस लगातार चल ही रहा
2: है।
3: बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं।
2: हाँ,

0: शुभकामनाएं आपको भी, आप जीते और हर्ष के साथ जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, क्रिकेटर आ रहे हैं और टीमें आ रही हैं, उनको दिखाएं कि हजारीबाग की धरती में भी मेहनत का वो रंग है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खेलेंगे शान से की ओर से, चलते चलते
1: खेलेंगे शान से,
0: जीतेंगे
1: जीतेंगे शान से,
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू,
2: खेलेंगे शान से।
3: दोस्तों, हर खिलाड़ी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लोग कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी नकारात्मक पीड़ा को सकारात्मक सोच, इच्छा शक्ति और एक जुनून, एक लक्ष्य की सौगंध के साथ खिलाड़ी एक दिन खुशियों की कहानी लिख ही देता है।
4: बिल्कुल सही कहा माने, और यही है हर जीत की असली कहानी, संघर्ष, मेहनत, खुद पर भरोसा। खेल खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए हर स्तर से संपूर्ण प्रयास, इन्हीं बातों को वर्षों से साकार करते हुए उस पथ पर हमें वो मिले, और बना हमारा दूसरा सेगमेंट
2: हर जीत की कहानी।
5: हेम शब्द का अर्थ सोना होता है, इसलिए हेमंत को स्वर्ण से भी जोड़ा जाता है। कई धार्मिक संदर्भों में इसे भगवान बुद्ध का एक नाम भी माना जाता है। हर चीज की कहानी आज हेमंत की जुबानी।
6: न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इम्तिहान बाकी है। ठोकरों ने सिखाया है चलने का हुनर, वरना इंसान तो बचपन से ही गिरते आया है। हेमंत कुमार, जिला सचिव, हजारीबाग ताइक्वांडो संघ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, NIS कोच।
5: खेल के प्रति, इस ताइक्वांडो के प्रति कैसे?
6: बचपन से हमको सर मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा है। चाइनीज का मूवी वगैरह देखते थे तो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगता था, और हमेशा उस तरह का कर्तव्य करने का इच्छा होता था, जैसे ब्रूस ली, जैकी चैन, ये सब का बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त फैन थे। जेट ली, सैटरडे को संडे को मूवी आता था स्टार गोल्ड में, देखा करते थे रात भर जाग जाग के। और इच्छा रहता था कि कभी भी अगर हमको मार्शल आर्ट से जुड़ने का अवसर मिला तो हम जुड़ेंगे और इस तरह का आर्ट सीखेंगे। तो विद्या मंदिर में ही हमारा नामांकन हुआ। पहले ही दिन में जब हम वहाँ पर पढ़ाई के लिए थे, उसी दिन वहाँ पे ताइक्वांडो का अभ्यास हो रहा था। हमको नाम भी नहीं पता था, इस आर्ट का नाम ताइक्वांडो है, कोरियन मार्शल आर्ट है। आवाज आ रहा था अलग अलग सा, एक मार्शल आर्ट का जो होता है फॉर्म, उसी तरह का पैड में किकिंग हो रहा है, कुछ स्टंट हो रहा है। तो वो सब देख के हम तुरंत क्या किए, टीचर को बोले कि हमको थोड़ा सा बाहर जाना है। बाहर जाके हम अपने मास्टर से मिले, बताए उनको कि सर हम इंटरेस्टेड, हमको इसमें भाग लेना है। तो वो बताए हमको कि ये ताइक्वांडो है, कराटे नहीं। जुड़ने का जो जो ऑप्शन था कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या शुल्क लगना है, वो सब दे करके आप ज्वाइन कर सकते। 2006 में जब हम दिल्ली गए, नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लगा,
5: उसके बाद तो वो सिलसिला शुरू हुआ।
6: मेडल 2006 से मेरा नेशनल स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, उसके बाद कंटिन्यूअस होते चला गया था। 2009 होगा कि हमने राज्य संघ से संपर्क किया और राज्य संघ के द्वारा फिर खेल को कंटिन्यू किया। लोगों को गवर्नमेंट वाला खेल चाहिए था, इसमें हम लोगों को बेनिफिट मिले। तो 2009-10 के बाद जब हम खेलना चालू किए, उसी के आधार पे हमको पहली बार झारखंड सरकार के तरफ से 36,000 का स्कॉलरशिप मिला नेशनल लेवल खेलने पर। उसके बाद दूसरी बार 2014 में फिर हमको फिर 36,000 मिला। तो इस तरह से मिलते मिलते अब होगा कि खेलकूद में इस तरह का कुछ मिलता भी है लाभ। फिर एक बार 72,000 रुपए मिला, खेलने का वो जो भी संसाधन कमी था वो सब दूर किया। और साथ में हजारीबाग में हम 2011 से इक्विपमेंट छोटा मोटा कुछ व्यवस्था की और स्टेडियम में क्लासेस स्टार्ट की। उस समय मेरे पास पांच छह लड़का था। ताइक्वांडो सिखाना अच्छा लगता है क्योंकि मेरा शुरू से यही खेल है, और हम बच्चों में देखते हैं उभरता हुआ एक खिलाड़ी है, एक मेडलिस्ट दे सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है, वही देखते हैं हम लोग, और उसी को देखते हुए उन लोगों को आगे मोटिवेट करते हैं सिखा। हमारा लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय के एशियन रैंकिंग टूर्नामेंट में हम भारत को मेडल दे सके, ऐसा अभ्यास और प्रयास कर रहे हैं सर।
5: समय देने के लिए, अपनी छोटी सी कहानी हमारे खेल के शान से खिलाड़ियों से शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
6: नमस्कार, धन्यवाद सर।
2: शाम से
3: तो वक्त हो गया है अब आज का खेल मंत्र सुनने का, तो सुनिए खिलाड़ियों
4: आज का खेल मंत्र। प्रसन्न नहीं पैसन में खेलो,
3: हार से मत डरो, कोशिश छोड़ने से डरो,
4: प्रैक्टिस इतनी करो कि जीत आदत बन जाए।
3: मैदान में बहाया पसीना जीत में बदलता ही है,
4: चैलेंज शुरुआत दिलवाता है, मेहनत आपकी पहचान बनाती है।
3: तो सपने बड़े रखो और बहाने छोटे।
4: आज का खेल मंत्र इस सेगमेंट से अब बाय बाय, खेलेंगे शान से।

0: अब आ रहा है हमारे सीनियर्स खिलाड़ियों का सेगमेंट।
1: सुनो खिलाड़ियों,
0: सुनो खिलाड़ियों, अगर मैदान में पसीना नहीं बहाओगे तो जिंदगी में आंसू बहाने पड़ सकते हैं।
1: सुनो खिलाड़ियों, फिटनेस कोई ऑप्शन नहीं, ये खिलाड़ियों की ताकत है। चूकना मना है तो दौड़ लगाइए, पानी पीजिए, सही भोजन कीजिए और पूरी नींद भी। तो इस सेगमेंट से आप बाय बाय, खेलेंगे शाम से।
0: तो अब ये है खिलाड़ियों का अपना अगला सेगमेंट,
1: खेल टिप्स। मैच से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें,
0: मैदान में फोकस बनाए रखें,
1: टीम स्पिरिट कभी ना छोड़ें
0: और खेल भावना सबसे ऊपर रखें,
1: क्योंकि असली और पक्का खिलाड़ी वही है जो जीत कर भी विनम्र रहे।
0: ताकत अपने लफ्जों में नहीं अपने खेल में रखिए,
1: क्योंकि पहचान आवाज से नहीं प्रदर्शन से बनती है।
0: खेल टिप्स इस सेगमेंट से अब
1: बाय बाय, खेलेंगे शान से। क्या हुआ खेल जगत में इस सप्ताह, किस खिलाड़ी ने मारी बाजी, कौन सी हलचल, कैसे खेल संसार में अपडेट हो रहे हैं, आइए जानते हैं और सुनते हैं
2: खेल अपडेट्स।
1: इंडियन प्रीमियर लीग अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है।
0: CSK वर्सेस LSG चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर।
1: MS धोनी 15 मई को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच के लिए टीम के साथ लखनऊ पहुंच रहे हैं।
0: वर्तमान में CSK 11 मैचों में 6 मैच जीत के साथ 5वें स्थान पर बनी हुई है
1: और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए यह सप्ताह उनके लिए बेहद अहम है।
0: अब तीरंदाजी से जुड़ी खबर,
1: भारत की ऐतिहासिक जीत,
0: शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला टीम ने कमाल कर दिया।
1: दीपिका कुमारी, कुमकुम अनिल मोद और अंकिता भगत की टिकड़ी ने फाइनल में चीन को हराकर विकर्म महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
0: खास बात ये कि भारत ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सेमीफाइनल में 10 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता दक्षिण कोरियाई टीम को 5-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया।
1: अब कुछ खबरें गोल्फ से, पीछे चैंपियनशिप 2026 दुनिया के प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंट में से एक पीछे चैंपियनशिप इस सप्ताह 11 मई से 17 मई तक
0: पेंसिल्वेनिया के एरोनेमिक गोल्फ क्लब में चल रही है। दुनिया भर के शीर्ष गोल्फर्स इस मेजर खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
1: अब कुछ खबरें साइकिलिंग की, गिरो जी इटालिया, साइकिलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी रेस में से एक गिरो जी इटालिया 8 मई को शुरू हो चुकी है दोस्तों,
0: और वर्तमान में एथलीट इटली और बुल्गारिया के कठिन रास्तों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
1: फुटबॉल, यूरोप में क्लब फुटबॉल की सीजन का अंत करीब है, UEFA यूरोपा लीग का फाइनल 20 मई को इस्तांबुल से होना तय है, जिसकी तैयारियां इस सप्ताह जोरों पर है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने हाल ही में साइप्रस में महिला कैंडिडेट 2026 जीत कर इतिहास रचा, जिसकी चर्चा इस पूरे सप्ताह खेल गलियारों में बनी हुई है।
0: दोस्तों, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो हर काम ही अलग तरीके से करते हैं।
1: हाँ, याद रखिए खिलाड़ियों, मित्रों मैदान में हारने वाला खिलाड़ी खत्म नहीं होता, कोशिश छोड़ने वाला ही खत्म हो जाता है।
0: हौसलों की आग जिंदा रखो, मंजिल खुद करीब आएगी। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारी जीत पर तालियां

0: कैसा लगा खेल पत्रिका का ये आज का अंक बताइएगा जरूर।
1: तो दोस्तों सपनों की तरफ दौड़ते रहिए,
0: पसीने को अपनी ताकत बनाइए
2: और हमेशा
1: जोश के साथ जुनून के साथ कहिए
2: खेलेंगे शान से।
0: तो दोस्तों अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय होंगे अपने सभी नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए वंदना श्रीवास्तव
1: और माणिक चक्रवर्ती कहता है सप्रेम आप सबको
2: नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन था वंदना श्रीवास्तव एवं माणिक चक्रवर्ती का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है।

मुकेश और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म ओपेरा हाउस में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज़।

आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस सफर में स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, बहुत सारे खतों के साथ हाजिर हैं हम, सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत पसंद आप सबकी। आप हैं ग्राम सुपाई साई झारखंड से देवेंद्र तातीर, राकेश तातीर, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन। महादेव घाट अमलेश्वर से आप है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांस ठाकुर। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीज फातमा, यास्मीन फातमा और शहनाज फातमा। बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से आप हैं यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। पसंद आप सबकी, आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बूत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एसआर कांगड़ा। रांची झारखंड से आप हैं सचिदानंद दुब्बे, मोहन पाठक, कुमार दिवाकर, निखिल, बिपिन, अर्जुन, आनंद, समीर, रामदेव, कुतुबद्दीन, रागीब, इफ्जाल ताज और नूर हसन नूरुल्ला। चिपकला बड़का गांव से आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सब्या ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका। हजारीबाग पतरातू से बेसिल खलखो, मधु, रितु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा, सोरेन और परिवार के सभी सदस्य। रांची से आप हैं वीर शंकर, आकाश, सतीश, मीनू, मीका और उनके बहुत सारे दोस्त। आप सबके पसंद पर सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें हैं।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

दोस्तों, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो लिख भेजिए अपने पसंद के गीत हमारे इस छोटे से पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद आप सबकी है। माली टोला खिर गांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और परिवार के सभी सदस्य। गोविंदपुर धनबाद से आप हैं शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। ओल्ड स्टार ग्रुप

रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, निखत परवीन, एहसान अहमद, तहसीन बानू आरजू परवीन, नसीम अहमद, खलील अहमद और निसार अहमद। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका।

और वंसपत्ता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फर्ज फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गीत आप सबकी पसंद पर, आप हैं पचमंदी रोड हजारीबाग से नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून, कहकशा परवीन, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन आरजू। बरकाकाना से आप हैं मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्तान अफजाल ताज और तस्नीम डम्बा डी। हरली से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, शाकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता, अपूर्व, टुकू और परिवार के सभी सदस्य। मेन रोड बड़कागांव से आप है दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला, उनके मम्मी पापा और बहुत सारे दोस्त। इटखोरी से आप हैं पंकज, मिनी, स्वाति और परिवार के सभी सदस्य। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गंगा की लहरें फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डर से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर और हरिहरन ने। फरमाइश आप सबकी दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। डोंगर गांव से आप

डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय, नया टोला भिकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और आरू साहू।

और दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं 9-2-11 फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। इस गीत की फरमाइश भेजी है जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम और कुसुम, झुमरी तिल्लैयासी आप हैं, जगन्नाथ प्रसाद साहू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:44 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9:00 न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानून

0: परिस्थिति में वीर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष 27.8 बिलियन डॉलर का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूल जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम

0: मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: धाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, धाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: उसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

गीतों भरे इस सफर में आज हमने शामिल किया है मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए गीतों को। 15 मई 1967 को जन्मी माधुरी दीक्षित आज अपना जन्म दिवस मना रही हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। 3 साल की उम्र से ही उन्हें नृत्य से लगाव हो गया था। इसके बाद 8 साल तक उन्होंने कथक का प्रशिक्षण लिया। कथक में पारंगत हासिल करने के बाद माधुरी ने पर्दे पर अपने नृत्य कला को प्रदर्शित कर दर्शकों का दिल जीत लिया। सुनिए साजन फिल्म का ये गाना।

स्वतः माधुरी दीक्षित पढ़ाई के अलावा उन्होंने नाट्य कला जैसी पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग लिया। अभिनय कला की बात करें तो 1984 में माधुरी दीक्षित ने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म अबोध में काम किया था और इस फिल्म से उन्होंने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा, जिसमें उनके को स्टार थे तापस पाल। फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन उनके अभिनय को सराहा गया। कुछ लगातार असफल फिल्मों के बाद 1988 में आई फिल्म तेजाब में उन्हें प्रसिद्धि मिली और इस फिल्म का अलका याग्निक द्वारा गाया वो गाना जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं और ये गीत उस साल की हिट लिस्ट में शामिल हो गया था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवा रहे हैं देवदास फिल्म का गीत।

फिल्म तेजाब की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई हिट फिल्में उनके नाम रही। ये फिल्में थी दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, थानेदार, राम लखन, साजन, खलनायक, परिंदा, अंजाम, देवदास सहित कई फिल्में। उन्होंने लगभग 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और देशव्यापी प्रसिद्धि हासिल की।

श्रोता, पुरस्कारों की बात करें तो माधुरी दीक्षित को 17 फिल्मों में नामांकित किया गया था, जिसमें से 6 फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम रहा। भारतीय फिल्म उद्योग में 25 वर्ष पूरे करने पर उन्हें फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री चौथा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2023 में 54वें IFI में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम रजनीगंधा का सफर अब यहीं तक। दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है 1968 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी।

दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना, अरे आत्म मेरी झांक के देखो जाने जाना, कौन तुम्हारा अपना है और कौन बेगाना।

0: प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई शशि कपूर, बबीता, अमिता, यूनुस परवीज और जॉनी वॉकर ने। फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया कल्याण जी आनंद जी ने।
1: मेरे महबूब,
0: आप सुन रहे मन्ना डे और आशा भोसले को

आगे क्या था भला। अरे हाँ, तेरे कुत्ते में पैदा इस तरह भूचाल कर दूंगा कि

अगर कुछ भी ना कर पाया तो इतना याद रख दालिम, तेरे बाबा की बाबा की बाबा की तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर।

कई यादगार गीतों में से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गाया हुआ यह गीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा उस साल का।

ना करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं, फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

बेवफा तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क न जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

1968 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फिल्म 9वें स्थान पर रही थी। फिल्म की शूटिंग ओ दिल बरजानिए, जो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, इस गीत को फिल्माया गया था रूपतारा स्टूडियो में। सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, हम आपको बताते चले, इस फिल्म के गीतों को लिखा कमर जलालाबादी, अख्तर रोमानी और प्रकाश मेहरा ने।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:59 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु

0: अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge on foreign travel. He said the report is totally false and there's not an iota of truth in it. The Prime Minister said there's no question of putting such restrictions on foreign travel.

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म क्रांति से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, अब चलने का वक्त भी आ गया है और हम चाहते हैं कि आप जहां भी हों हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार, परंतु उससे पहले हमारी अंतिम पेशकश आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म उपकार से।